समवेत स्वर में अभी आपने सुना ये मातृवंदना, और अब लीजिए सुनिए विपिन सचदेवा और हरिहरन की आवाज़ में ये भजन।

0: जाहिद नजा कव्वाल के गाए इस नाद के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 5:55 हुए हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स, विषय है धान की खेती।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं धान में लगने वाले कीड़े, गंधी कीट, पत्ती लपेटक व केस वॉर्म के बारे में। सबसे पहले आइए देखें कि गंधी कीट किस प्रकार से धान की फसल में नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के निम्फ व प्राउड दोनों हरे रंग के होते हैं तथा पौधों के विभिन्न भागों का रस चूसकर पौधों को हानि पहुँचाते हैं। इनके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आती है जिससे उनकी उपस्थिति का पता चलता है। इनका प्रकोप दानों में दूध भरने की अवस्था में होता है। ये कीट दाने के रस को चूसता है जिसके कारण दाने खाली रह जाते हैं और चूसा हुआ स्थान मटमैले सफ़ेद रंग का हो जाता है। गंधी कीट के प्रबंधन के लिए खेत के किनारे उगने वाले खरपतवारों को आपको नष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए आप नीम पर आधारित कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कर सकते हैं। रात के समय प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर कीड़ों को आकर्षित कर सकते हैं और फिर इस प्रकार इनको आप मार सकते हैं। किसान भाइयों, शंकर मछली के मांस के टुकड़ों को या मृत केकड़ों को खेत में 4 से 5 जगह पर अगर आप रख दें तो इनमें गंधी कीट आकर्षित हो जाते हैं। जब गंधी कीट इन टुकड़ों की ओर आकर्षित होते हैं तब आप इन्हें नष्ट कर सकते हैं। फसल पर एंडोसल्फान या मेलाथियान दवा का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इन दवाओं की 0.4 से 0.6 किलोग्राम क्रियाशील अवयव प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव किया जा सकता है। गंधीबग के बाद आइए अब बात करते हैं पत्ती लपेटक कीट की। इस कीट की सुंडी धान की पत्तियों को अपनी लार से चिपकाकर उसमें छिपी रहती है और अंदर ही अंदर उसको खाती है। इसका परिणाम ये होता है कि पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और सूख जाती हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में फसल में उत्पादन में काफ़ी कमी देखी गई है। पत्ती लपेटक कीट के प्रबंधन के लिए रात के समय आप प्रकाश प्रपंच का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश प्रपंच के प्रयोग से ये कीड़े प्रकाश की ओर आकर्षित हो जाते हैं और इस तरह आप इन कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक बहुत ही आसान तकनीक से भी आप इन कीड़ों को बहुत हद तक रोक सकते हैं। इसके लिए नारियल की रस्सी का प्रयोग कर पौधों को झुकाते हुए खेत में आगे बढ़ना होता है। इससे जो सुंडियाँ होती हैं वो पानी में गिर जाती हैं। इसके बाद आप खेत में केरोसिन तेल को छिड़क सकते हैं। तेल की एक पतली परत पानी के ऊपर बन जाती है जिससे सुंडियों को सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलती और ये मर जाते हैं। इस विधि को अपनाने के लिए खेत में लगभग 5 सेंटीमीटर पानी का होना बहुत ज़रूरी है। पत्ती लपेटक कीड़ों के नियंत्रण के लिए आप नीम पर आधारित कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक जैविक नियंत्रण का सवाल है

0: तो इसके लिए आप ट्राइकोग्रामा किलोनिस के अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कीड़े के 20,000 से 40,000 अंडे प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में आपको प्रयोग में लाना है। इसके लिए ट्राइकोकार्ड आप प्रयोग में ला सकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों में क्लोरपाइरिफस या क्विनाल्फस दवा 0.2 किलोग्राम क्रियाशील अवयव प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं केस वार्म की। इस कीट के प्राउड मादा के सफ़ेद पंखों पर भूरे रंग की धारियां पाई जाती हैं और सुंडी हल्के हरे रंग की होती है। इस कीट का प्रकोप धान रोपने के बाद छोटे पौधों पर अधिक देखने को मिलता है। सुंडी पत्ती के किनारे कुतरकर एक छोटा सा केस बना लेती है और उसी के अंदर पत्ती को खुरच कर खाती है, जिससे पत्ती पर सफ़ेद धारियां बन जाती है। अधिक प्रकोप होने पर पौधे छोटे रह जाते हैं और उनकी बढ़वार रुक जाती है और कभी-कभी पौधे मर भी जाते हैं। इन कीड़ों के प्रबंधन के लिए रात्रि के समय आप प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर सकते हैं। पत्ती लपेटक में जिस नारियल की रस्सी की विधि का हमने जिक्र किया था, उसका प्रयोग केस वार्म के लिए भी किया जा सकता है। नीम पर आधारित कीटनाशकों के प्रयोग से भी केस वार्म पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। जहाँ तक रासायनिक कीटनाशकों का सवाल है, तो इसके लिए आप एंडोसल्फान या कार्बरिल दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इन दवाओं को 0.2 किलोग्राम क्रियाशील अवयव प्रति एकड़ की दर से छिड़कना चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स, विषय था धान की खेती।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजे हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

और 11:40 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

0: आरोप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, एनएसएस वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नक्काशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the project are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं।
3: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज, व्हाइल द फिफ्थ इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द फिफ्थ प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
2: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamari Sonbursa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. Defense Minister Rajnath Singh will hold a bilateral meeting with the Defense Minister of Japan, Shinzo Koizumi, in New Delhi today. The meeting is expected to further strengthen bilateral defense relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defense equipment and technology collaboration under the Make in India framework.

जहाँ जाने सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी बाराटान आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद दीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद दीप से स्वराज दीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज दीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी जॉली बॉय आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज दीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज दीप से शहीद दीप जाएगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद दीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। स्वराज दीप जाने के लिए एमवी स्ट्रीट आइलैंड आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल सुबह 5:30 पर स्वराज दीप से छोड़कर शहीद दीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी रंगत कल यानी शुक्रवार 21 तारीख को सुबह 6 बजे स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इस जलयान की वापसी यात्रा कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद दीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8 बजकर

0: 30 मिनट पर शहीद देव से श्री विजयपुरम के लिए लौटेगा। एमवी बम्बो का कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा तथा इस जलयान की श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा होगी कल ही सुबह 8:45 पर। एमवी रानी लक्ष्मी कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड का दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। स्वराज द्वीप जाने के लिए एमवी रानीचंगा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी शनिवार 22 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। एमवी जॉली बॉय कल सुबह 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान 22 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैंबल बे कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान शनिवार 22 तारीख को सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

नमस्कार, सुप्रभात। इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। आज बातें अपने अंदर की ताकत की, यानी शक्ति की। शक्ति सिर्फ बाहों या बाजों में नहीं होती, शक्ति होती है कुछ कर गुजरने के हौसलों में, मुश्किलों के सामने खड़े रहने में, और शक्ति होती है उस विश्वास में जो कहता है अभी बहुत कुछ बाकी है। श्रोताओं, हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें बाहरी सहारे से अधिक आवश्यकता होती है अपने भीतर के विश्वास और आत्मबल की। ऐसे समय में प्रार्थना हमें सही मार्ग पर चलने, कठिनाइयों का सामना करने और अपने मन को मजबूत बनाए रखने की प्रेरणा देती है।

0: शक्ति का मतलब हमेशा ताकत नहीं होता। एक माँ का अपने बच्चे के लिए संघर्ष करना भी शक्ति कहलाती है। एक युवा का अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना भी शक्ति है। हारते हुए व्यक्ति का फिर से उठ खड़ा होना भी शक्ति है। और नारी केवल कोमलता और ममता का नाम नहीं, बल्कि साहस, शक्ति और अटूट आत्मविश्वास की पहचान है। वह अपने स्नेह से परिवार को संभालती है, अपने संघर्ष से परिस्थितियों को बदलती है और अपनी हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करती है। फिल्मी गीतों में भी नारी के इसी अदम्य साहस और शक्ति को खूबसूरती से स्वर दिया गया है।
1: कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का।

जीवन को सही दिशा और दशा देने की शक्ति हम सबके भीतर होती है। जब मुश्किलें बढ़ जाएं, तो बस इतना कहना है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे भीतर आगे बढ़ने की शक्ति है। क्योंकि ज़िंदगी हमें हर सुबह एक नया मौका देती है, एक नई शुरुआत का, एक नई उम्मीद का और खुद को साबित करने का। हमारे अंदर की शक्ति हमें मुश्किलों से रास्ता निकालना सिखाती है। जीवन है तो शक्ति है, और शक्ति है तो संभावनाएं भी अनंत है। इसी उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा के साथ चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के समय 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 336वीं कड़ी। गायक कलाकार ए हरिहरन तथा संगीत संयोजक है सतीश भाटिया।

रावण का यज्ञ विध्वंस करने के लिए वानर भालू आ पहुंचे हैं, किंतु अपने उत्पात से जब वे उसे वेदी से नहीं उठा पाए तो उसके शरीर पर अपने भीमकाय दांतों और लातों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, किंतु उसका ध्यान तब भी भंग नहीं हुआ। वानर भालुओं ने तब वहां की स्त्रियों के केश पकड़कर महल से बाहर घसीटना आरंभ किया। रावण अब अपना धैर्य खो बैठा और उठकर वानरों के पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें धरती पर पटकने लगा, किंतु इस प्रकार उसका यज्ञ तो भंग हो ही गया। रावण अपनी सेना फिर से सजाकर युद्ध भूमि की ओर अग्रसर होता है। अब शकुन रूप में उसके सिर पर गीद मंडरा रहे हैं, किंतु इसकी अनदेखी करके वह युद्ध का डंका बजवाता है और एक बार फिर घमासान युद्ध होने लगता है। युद्ध के बाद युद्ध, फिर और युद्ध। देवताओं का धैर्य टूटने लगा है। वे प्रभु से विनती करते हैं कि अब और विलंब न करके वे रावण का वध करें। श्रीराम अपना शारंग धनुष लेकर जब युद्ध के लिए अग्रसर होते हैं तो धरती डगमगाने लगती है।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 336वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए वतन के गीत।

संवेद स्वर में अभी आपने सुना देशगान। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:50 हुए हैं। आप सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवा और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने के चलते अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर कार्यक्रम होगा देश रागनी। ठीक उसी समय FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम 7:30 पर, जिसके अंतर्गत पर्यावरण कार्यक्रम में आप श्री राजा राम की वार्ता सुनेंगे। विषय होगा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य। साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी प्रसारित की जाएगी। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप विभिन्न कलाकारों को सुनेंगे। तराने सुहाने कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सी सरोजा और सी ललिता का कर्नाटक शैली में गायन सुन पाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस सुबह 10 बजे आप सुन सकते हैं। दिन में 11 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित की जाएगी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत 11:30 पर आप सुन सकेंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु में सुपरहिट गीतों का आनंद लीजिएगा। साथ ही सद्भावना दिवस पर चर्चा भी की जाएगी। 12:30 पर मलयालम में फिल्मी गीत प्रसारित की जाएगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शारदा को सुन पाएंगे 1:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुनिएगा 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय सभा जारी रहेगा, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक। 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा फैंसी म्यूजिकल ग्रुप के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत आपको सुनवाएंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण आपको दिया जाएगा 4:40 पर।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल में किसानों के लिए कार्यक्रम होगा वेलन उलगम। साथ ही राजीव गांधी की जयंती पर चर्चा भी होगी। पाँच बजकर 30 मिनट पर बांग्ला में कार्यक्रम होगा चिरंतनी। साथ ही राजीव गांधी की जयंती पर चर्चा आप सुन पाएंगे। किसानवाणी कार्यक्रम शाम 6 बजे, जिसमें डॉलीगंज शिव कॉलोनी की एक महिला पशुपालक श्रीमती जी कमला से की गई बातचीत आपको सुनवाएंगे। विषय होगा मुर्गी पालन, कम लागत और ज़्यादा मुनाफा। 6:30 पर श्री मोहन सिंह सिंगल का लिखा रूपक सुनिएगा रविंद्र का बचपन। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आपको दी जाएगी 7:15 पर। 7:20 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवावाणी कार्यक्रम 7:30 पर, जिसके तहत आप सुनेंगे पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार और सांप्रदायिक सद्भाव शांतिपूर्ण जीवन के लिए अनिवार्य, इस विषय पर लघु रूपक भी आप सुन सकेंगे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार, उसके बाद गौरवगान प्रसारित की जाएगी। FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत 9:30 पर। और रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटिरूप्यकाधिकाः 5 परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धा एका च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णव उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजना अनुमोदिता। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000 तमवर्षात् 31,2,000 तमवर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य 4 मानकानुसारं उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,500,000 कोटि रूप्यकाधिक

0: पहले सुनिए मौसम का हाल। आज सुबह 5:30 बजे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 7.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 87% और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्रीविजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ और सूर्यास्त का समय होगा 5:47। ये थी मौसम की जानकारी।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level.

0: दो लाख रुपए एट द यूटी लेवल एंड पांच लाख रुपए एट द नेशनल लेवल. सेलिब्रेट योर रूट्स, इंस्पायर द नेशन. जेम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ स्टोरी वर्थ टेलिंग.
1: अब सुनिए आज के विमान उड़ान संबंधी जानकारी. एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा और

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों के बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2027 का शुभारंभ विकसित भारत प्रश्नोत्तरी के साथ हुआ, जो 30 सितंबर तक चलेगा। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से 28 से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा। मध्य उत्तर अंडमान जिला उपायुक्त सुशांत पादा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टुगापुर में जरवा वार्ड का उद्घाटन किया और अगले 5 दिनों में द्वीप समूह के एक आध स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2027 का शुभारंभ 17 अगस्त से 30 सितंबर तक चलने वाली विकसित भारत प्रश्नोत्तरी के साथ हो गया है। ये संवाद पूरे देश के युवाओं के लिए नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की एक सुनियोजित और योग्यता पर आधारित यात्रा में भाग लेने का अवसर है। इस संवाद में विकसित भारत प्रश्नोत्तरी निबंध प्रतियोगिता तथा जिला, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तर की चैंपियनशिप का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विकसित भारत युवा नेता संवाद के साथ संपन्न होगा, जहां चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि तारीख बढ़ने से देश भर के योग्य युवाओं को इस अनोखे युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में पंजीकरण करने और हिस्सा लेने का एक और मौका मिलेगा। 18 से 30 साल आयु वर्ग के युवा आधिकारिक पोर्टल के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। युवा संगम के 7वें चरण के लिए IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय और NIT समेत 20 उच्च शिक्षण संस्थानों को नोडल संस्थान के रूप में चुना गया है। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से 28 से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन 29 अगस्त को हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर देशव्यापी अभियान खेलेगा भारत जीतेगा भारत और फिट इंडिया पहल के तहत 3 प्रमुख स्तंभों श्रद्धांजलि, खेल और आगे बढ़ें के आधार पर आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 28 अगस्त को मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि, खेल चुनौतियां, एथलीटों व कोचों के साथ बातचीत, 29 अगस्त को 1 घंटा खेल के मैदान में विषय के साथ मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसमें सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों द्वारा कम से कम 1 घंटे के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के आयोजन होंगे। 30 अगस्त को साइकिलिंग, वॉकाथॉन और रन एंड राइड और अन्य प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। शिक्षा विभाग के सहयोग से तीनों जिलों के शैक्षणिक ब्लॉकों में स्कूली बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताएं और 10 किलोमीटर की रोड रेस आयोजित होगी। ओपन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक नागरिक पंजीकरण के लिए खेल एवं युवा मामले विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संस्कृति, विरासत और अनकही कहानियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के तहत द्वीप समूह में जागरूकता और अभिविन्यास कार्य

कलाओं के आयोजन किए जा रहे हैं। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य छात्रों, युवाओं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को द्वीपों की समृद्ध पहचान, जनजातीय संस्कृति, इको टूरिज्म, स्थानीय व्यंजनों, परंपराओं और इतिहास पर डिजिटल सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस सिलसिले में कल द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों और प्रशासनिक कार्यालयों में वर्चुअल कार्यशालाओं के आयोजन किए गए, जिसमें पर्यटन विभाग के विशेषज्ञों ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। आज भी द्वीपों के अन्य क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इच्छुक प्रतिभागी वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड कर अपनी प्रविष्टियां 31 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मध्य उत्तर अंडमान जिला उपायुक्त सुशांत पादा ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टुगापुर में 4 बिस्तरों वाले जारवा वार्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पहलगांव के प्रधान शिवानंद बैरागी, ग्राम पंचायत चैनपुर के प्रधान जॉनसन क्रिकेटा और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। इस समर्पित वार्ड की शुरुआत स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और जारवा जनजाति के लोगों को समान व सुलभ चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए लुइस इनलेट बे में रहने वाले जारवा जनजाति की समस्याओं पर चर्चा की। अगले 5 दिनों के लिए मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार द्वीप समूह में एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होगी। इस दौरान हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 22 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पर्यटकों व आम जनता को तटीय गतिविधियों और मनोरंजन के दौरान उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन निदेशालय की ओर से शिक्षकों के तीसरे बैच के लिए स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा निदेशालय के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के 45 शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर सहायक निदेशक जनिक राम ने शिक्षण संस्थानों में आपदा तैयारियों को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। आपदा प्रबंधन निदेशक प्रियंका कुमारी ने आपात स्थिति के दौरान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। तकनीकी सत्र के दौरान स्कूल सुरक्षा, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रिया और अग्नि सुरक्षा पर जानकारी दी गई। रामकृष्णपुर गांव के किसानों के लिए हाल ही में अजोला खेती पर प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को अजोला गड्ढे स्थापित करने के लिए अजोला के पौधे और मवेशी आहार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 21 किसानों ने भाग लिया। असंगठित मजदूर एवं कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष एस तेजेश्वर राव ने उपराज्यपाल से ब्लॉक किए गए राशन कार्डों और लंबित आइलैंडर कार्ड के आवेदनों के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कई पात्र राशन कार्ड निष्क्रिय पड़े हैं, ऐसे सभी कार्डों की पहचान के लिए द्वीपवासी अभियान चलाया जाए। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना के तहत पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाई है। इसके अलावा अखबार ने सांसद के मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने पर्यटन हितधारकों द्वारा विमान की कमी को लेकर चिंता जताए जाने के समाचार को प्रकाशित किया है। इन्फो इंडिया ने आम जनता से टीबी मुक्त भारत ऐप डाउनलोड करने और उसका सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने की अपील, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने उच्च शिक्षा निदेशक के पोकाडेरा खेल मैदान के विकास को लेकर चर्चा के समाचार को

ने अखबार में जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, विकसित भारत युवा नेता संवाद 2027 का शुभारंभ विकसित भारत प्रश्नोत्तरी के साथ हुआ, जो 30 सितंबर तक चलेगा। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से 28 से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा। मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त सुशांत पादा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टोगापुर में जारवा वार्ड का उद्घाटन किया और अगले 5 दिनों में द्वीप समूह के एक आध स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागनी।

देश रागनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत हमारा प्यारा देश है। यह विविधताओं में एकता, प्रेम, शांति और भाईचारे की अनोखी मिसाल है। हमारे देश में अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं, फिर भी हम सभी भारतीय होने के नाते एक है। हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली भारत की धरती अपने प्राकृतिक सौंदर्य और गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।

हमारा देश महान स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों के बलिदान से स्वतंत्र हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और असंख्य वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। आज भी हमारी सीमाओं पर तैनात वीर सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा निरंतर करते रहते हैं। उनका साहस और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।

दोस्तों, भारत केवल अपने इतिहास और संस्कृति के कारण महान नहीं है, बल्कि शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम शिक्षा, मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाएं, तो भारत को और भी अधिक मजबूत और विकसित और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमें अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए तथा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए अपना योगदान देना चाहिए।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: दोस्तों, पर्यावरण को संरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रदूषण और लापरवाही भरे आदतों के कारण प्रकृति नुकसान पहुंचाती है, जीवन को कठिन बना देती है। बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे पर्यावरण कार्यक्रम में श्री राजा राम की वार्ता। विषय है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य।
1: मनुष्य और पर्यावरण के बीच एक स्थायी संबंध है। जिस वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं वह हमारे स्वास्थ्य और सेहत को निर्धारित करता है। पर्यावरण प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि पृथ्वी ग्रह ही मनुष्य का एकमात्र घर है, जो भोजन, हवा, पानी और लाखों अन्य चीजें प्रदान करता है। मानवता की संपूर्ण जीवन समर्थन प्रणाली पूरी तरह से पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रजातियों की भलाई पर निर्भर करती है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी की घटनाएं और खराब पानी की गुणवत्ता जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के संपर्क में आने से मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अलग अलग आबादी और समूह पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता में भिन्न होते हैं, जो अक्सर उम्र की, जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के परिणाम स्वरूप होता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य का एक विशिष्ट संयोजन है। जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वह हवा, पानी, मिट्टी आदि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए हम पर्यावरण को समझे बिना मानव स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकते। मानव अपने जीवन की उत्पत्ति से ही पर्यावरण से संबंधित रहा है। मानव पर्यावरण का संबंध मनुष्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी रहा है। पिछली 4 शताब्दियों में मानव की गतिविधियों के कारण पृथ्वी के मूल तत्वों जैसे हवा, पानी, मिट्टी तथा रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी के भौतिक और रासायनिक विशेषताओं में तेजी से रूपांतरण हुआ है। इस रूपांतरण के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण फैला है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वे सारे कारक जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वह

मानव जनित गतिविधियों द्वारा ही उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली के रूप में परिभाषित करने पर जोर दिया है। WHO 2014 के अनुसार स्वास्थ्य का संबंध केवल बीमारी या कमजोरी से नहीं, बल्कि इसका संबंध मानव जीवन के संपूर्ण भौतिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण या खुशहाली की स्थिति है। पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो न केवल मानव अपितु सभी चेतन अचेतन प्राणियों एवं वनस्पतियों के उद्भव, विकास तथा अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण का निर्माण हमारे चारों तरफ विद्यमान जैविक अजैविक तत्वों द्वारा होता है। इनमें पारस्परिक संबंध एवं संतुलन एक स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सभ्यता के विकास से वर्तमान समय तक मानव ने जो भी प्रगति की है, उसमें पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सृष्टि में जितनी भी सभ्यताएं और संस्कृतियां विकसित हुई हैं, वे मानव पर्यावरण के सामंजस्य का परिणाम है। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताएं प्रतिकूल पर्यावरण के कारण कालांतर में नष्ट हो गईं। मानव के भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर पर्यावरण का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न हो गए, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मानव का स्वास्थ्य इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है। यह तो अविवादित सत्य है कि आज के बढ़ते औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ने इंसान को ऐसी अति आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनके कारण उसका जीवन अप्रत्याशित रूप से सरल और सहज बन गया है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि बढ़ते औद्योगिकरण और उन्नत औद्योगिकी के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो गए हैं। इस व्यवधान ने प्रकृति के स्वाभाविक सामंजस्य को असंतुलित कर दिया है, और चूंकि मानव जीवन प्रकृति का अभिन्न अंग है, इसलिए बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन ने इंसान के जीवन को भी असंतुलित कर दिया है। फलस्वरूप आज का बिगड़ा पर्यावरण मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। आज औद्योगिकरण के इस युग में पर्यावरण दूषित है, तो हम स्वच्छ भोजन, जल और वायु की कल्पना कैसे कर सकते हैं? परिणाम स्वरूप मनुष्य में अनेक बीमारियां जन्म ले चुकी है। कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर जल को अत्यधिक प्रदूषित करता है। प्रदूषित पानी पीने से अनेक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति के कारण कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण लाइलाज बीमारियों को जन्म देते हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य निसंदेह उसकी बड़ी पूंजी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का वास होता है। मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य न केवल उसके लिए, बल्कि उसके परिवार, देश, समाज सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य पर पर्यावरण का कुप्रभाव निश्चय ही चिंता का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैश्विक बीमारी के बोझ के एक बड़े हिस्से को रोकने के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देता रहा है। WHO के अनुसार पर्यावरणीय जोखिम हर साल लाखों मौतों का कारण बनते हैं, जिनमें गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग और श्वसन रोग सबसे आम होते हैं। इन पर्यावरणीय स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के प्रयासों में प्रदूषकों पर नजर रखना, प्रदूषण को कम करने के लिए कानून और नीतियों को लागू करना और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, जैसे खतरनाक पदार्थों के संपर्क को कम करना और स्वच्छता में सुधार करना, इन मुद्दों से निपटने में महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। प्रकृति में कोई भी जीव अकेला जीवित नहीं रह सकता। प्राकृतिक शक्ति के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के जीवन प्रकृति में एक साथ रहते हैं। प्राणी मात्र के जीवन के लिए संतुलित पर्यावरण की आवश्यकता होती है, और एक स्वच्छ तथा संतुलित पर्यावरण ही उसके स्वस्थ जीवन की कसौटी है। संतुलित पर्यावरण में प्रत्येक जैविक घटक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित रहते हैं, परंतु कभी कभी वातावरण में एक तथा अनेक घटकों की मात्रा एवं अनुपात या तो आवश्यकता से अधिक हो जाती है, अथवा उनमें हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जो कि मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्रत्येक 5 में से 4 व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं, जैसे सांस की तकलीफ, हृदय रोग, बहरापन, अंधापन, सरदर्द, तनाव, अनिद्रा, घबराहट, कैंसर और कोरोना जैसी महामारियां हैं। संसार में मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी इससे अछूते नहीं है। प्रदूषित पर्यावरण ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले रखा है। इससे

0: मान लगाया जा सकता है कि आज पर्यावरण कितना प्रदूषित हो गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रदूषण वायु, जल एवं मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक अन्य जंतुओं, पौधों, कच्चे माल तथा उद्योग आदि को किसी न किसी प्रकार हानि पहुंचाता है। जहां मनुष्य इस प्रदूषण का सर्वाधिक भुक्तभोगी है, वही विडंबना यह है कि वह इस प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी भी है। पृथ्वी के पर्यावरण को प्रदूषित करने में मनुष्य ने अहम भूमिका निभाई है। अपने स्वार्थ और भोगवादी लिप्सा के कारण मनुष्य ने प्रकृति में तबाही मचा दी है। वृक्षों, वनों एवं वनस्पतियों की व्यापक स्तर पर अंधाधुंध कटाई और उसकी भरपाई ना होने की स्थिति में पर्यावरण असंतुलित हो गया। अतः अब पर्यावरण असंतुलन तथा उससे उपजे स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां मानव जाति के भावी अस्तित्व के साथ जुड़ गई हैं। दुर्भाग्य से दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो पर्यावरणीय क्षति से मुक्त हो, यहाँ तक कि ध्रुवीय क्षेत्र भी नहीं। मानव अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह और सादे पुराने डंपिंग क्षेत्र सभी देशों में पारिस्थिति के साथ कहर ढा रहे हैं। पिछले दशकों में यूरोपीय देशों ने भारी धातु और नाइट्रेट जैसे खतरनाक कचरे को बिना किसी योजना या एहतियात के फेंक दिया था। परिणाम भूजल और सतही जल बुरी तरह से दूषित हो गए और मिट्टी की गुणवत्ता निचले स्तर पर चली गई। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन और स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी तत्वों जैसे हवा, सुरक्षित पेयजल, पौष्टिक खाद्य आपूर्ति और सुरक्षित आश्रय को खतरे में डालता है और वैश्विक स्वास्थ्य में दशकों की प्रगति को कमजोर कर सकता है। WHO के अनुसार कमजोर स्वास्थ्य ढांचे वाले क्षेत्र, ज्यादातर विकासशील देश, बिना तैयारी और प्रतिक्रिया के कारण जलवायु लचीले स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य की रक्षा में राष्ट्रीय प्रगति पर नजर रखने में सबसे कम सक्षम होंगे। 2030 और 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और गर्मी के कारण होने वाले तनाव से हर साल लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होने की आशंका है। पर्यावरण प्रदूषण एवं मानव स्वास्थ्य एक वैश्विक मुद्दा है जिसका मनुष्य के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सरकार, उद्योगों, समुदायों और व्यक्तियों से ठोस प्रयास की आवश्यकता है। हम कड़ी नीतियां, तकनीकी नवाचार, सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से एक स्वस्थ पर्यावरण और परिणाम स्वरूप एक स्वस्थ आबादी की दिशा में काम कर सकते हैं। आइए प्रतिदिन प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हों और एक स्वच्छ स्वस्थ ग्रह की ओर ले जाने वाले परिवर्तनों की वकालत करें। पर्यावरण संरक्षण न केवल सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि ये हम में से प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण अनुकूल कार्य करें और इस पृथ्वी पर जीवन को सरल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें।
1: श्रोताओं, अभी आप पर्यावरण कार्यक्रम के तहत श्री राजा राम की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य। और अब गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
3: Kam pyaaj pe loan chahiye, wo bhi app se? Wow!
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। दोस्तों, आज भारत अक्षय ऊर्जा दिवस मना रहा है, साथ ही अपने छठे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी 82वीं जयंती पर याद कर रहा है। राजीव गांधी भारत और विश्व की राजनीति में एक जाना माना नाम है। आज विश्व उनकी 82वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

जी हाँ दोस्तों, प्यार बांटते चलिए। सद्भावना दिवस भी हमें यही शिक्षा देती है, हमें विभाजनों से हटकर संबंधों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, हम सभी के सपने, आकांक्षाएं और चुनौतियां एक जैसी है। अपनी साझा मानवताओं को स्वीकार करके हम एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जहां एकता फलती फूलती है।

दोस्तों, सद्भावना की परिभाषा क्या है? सद्भावना की परिभाषा है मैत्रीपूर्ण या दयालु रवैया, परोपकार, प्रसन्नता पूर्वक सहमति, तत्परता, एक अच्छा संबंध, जैसे किसी व्यवसाय का अपने ग्राहकों के साथ या किसी राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के साथ। ये होती है सद्भावना की परिभाषा।

0: झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त,

0: तो दोस्तों, सद्भावना दिवस की शुभकामनाओं के साथ गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन और 5

0: प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोन बरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से

0: उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
4: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग

0: स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है, उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे।

0: परीक्षा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, सीआईडी को सौंपी गई जांच। यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. Fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
3: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
4: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
2: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
3: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbarsa on the Nepal border and passes through Sitamarhi and Muzaffarpur. It will create a complete transport artery which will benefit Bihar for many years. It is an 83-kilometer brownfield project under which the existing road will be upgraded into a 4-lane highway with an investment of
4: 3,591 crore rupees.
2: Union Home Minister Amit Shah will chair 31st meeting of the Southern Zonal Council at Kovalam near Chennai in Tamil Nadu this morning. The meeting is likely to focus on issues

0: श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव इनवाइटिंग क्रिएटर्स टू शोकेस द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, वेदर इट्स कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, फेस्टिवल्स, क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट्स, local heroes or hidden destinations. Your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम सुगम संगीत में, और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल।

अभी आप अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को सुन रहे थे। श्रोताओं, सुगम संगीत के आखिर में पेश है इकबाल बानो की आवाज़ में ये गज़ल।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 9 बजे हैं और अब श्रोताओं आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सौदागर फिल्म से।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना सौदागर फिल्म का गाना, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। अब लीजिए सुनिए राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार मजरूह का लिखा गाना आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं।

0: श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको सुनवाएंगे बाकी के गीत, तो बने रहे हमारे साथ।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, आखिर मेरी भी कोई अहमियत है। लोग सोचते हैं कि मैं मच्छर के काटने से फैल जाता हूँ। अरे भाई, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है, मैं नहीं। कोई कहता है कि एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, कपड़े या तौलिया साझा करने से, या फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने पीने, उठने बैठने, पढ़ने काम करने से, बात करने से फैल जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे बारे में ठीक से तो जान लो, मैं इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community.

0: community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गीत। SH बिहारी के बोल हैं व ओपी नैयर का संगीत।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी के गाए हम दोनों फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए सिक्किम बहनों का कर्नाटक शैली में गायन। इसके साथ वायलिन पर उषा राजगोपाल, मृदंगम पर तंजावुर एस सुब्रहण्य और घटम पर गोविंद राज ने संगति की है। तो लीजिए पहले सुनिए नर्वसा कनाडा, जो पलकुकंद आदि ताल में निबद्ध है।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू। स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
5: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स, TNC अप्लाई।
0: कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सी सरोज और श्री ललिता का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माय चॉइस।
1: SMS നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്।
0: कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। यह गीत सुनना चाहते हैं नवा शहर पंजाब से प्रीति डिंपल और दलजीत। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का यह गीत।

उदित नारायण की आवाज़ में श्रोताओं लीजिए सुनिए अगला गीत, जिसके लिए हमें SMS भेजा है श्री विजयपुरम काचाल से संजय ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत।

अभी आप क्या दिल ने कहा फिल्म का गीत सुन रहे थे। अगला एसएमएस हमें आया है झारखंड से निर्मला, पारो, राधा और चांदनी का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत।

सुनीता, सुप्रिया, कावेरी और प्रेमा मेहता का हमें SMS आया है गुजरात से। ये श्रोता सुनना चाहते हैं खाकी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अर्नब और श्रेया घोषाल ने।

0: सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र जय नारायण तरुण प्रतीक चौहान का हमें SMS आया है। ये श्रोता सुनना चाहते हैं पतंग फिल्म का ये गीत।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

शिवा प्रेम संगीता लिपि दीपाली ने हमें पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से एसएमएस भेजा है। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।

छोटी सी बात फिल्म के गीत के लिए अगला एसएमएस हमें भेजा है संबलपुर कानकेल से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव ने। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा, नवाज़ हसन, नवाज़ बाबू अहमद मिश्रा, बेबी चाहत ने हमें झारखंड से एसएमएस भेजा है। ये श्रोता सुनना चाहते हैं अनारी फिल्म का ये गीत।

अनुराधा पौड़वाल और सुरेश की आवाज़ में सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसके लिए हमें SMS आया है महाराष्ट्र से। शंकरलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल का। फिल्म का नाम है लीडर।

अभी आप SMS माई चॉइस कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1354वीं कड़ी।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है
2: जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियां तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है
2: जी।
3: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
3: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा
2: जी।
3: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
3: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया
2: जी।
3: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
2: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
3: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
2: जी।
3: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
2: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने

0: था कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी।
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।
0: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलहाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों,

0: आदतों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओं, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी,
1: हेलेन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ,

0: इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी
1: सोनी जल्दी आएगी।
0: सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
2: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए आ गए आ गए, देखो
3: देखो आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
2: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
3: हाँ, ये बात तो है,
4: पानी की समस्या तो है,
5: हम तो परेशान हो गए हैं।
2: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
6: जल चक्र?
2: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
2: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
7: सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया, आगे जोड़ो झुमरू जी और वो भी ताल में।
2: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए, जब लद गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां।
2: रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, चहू और हरियाली छाई, झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
2: बताते हैं, बताते हैं, सुनिए।

0: पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
1: क्या बात है! सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे जल चक्र यूं चलता जाता।
0: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
2: बहुत अच्छा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
4: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
5: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
6: ये मारा! हरा दिया, हरा दिया।
7: वैसे तनु, आज बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
8: जी,
7: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
8: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
7: ये कैसी अजीब बात है?
8: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
7: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
8: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
7: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
8: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
7: अच्छा?
8: हाँ, और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
7: हाँ, बेटा
8: जल्दी सुनाइए।
7: अरे सोचने तो दो,
8: जल्दी
7: मैं किसकी कहानी सुनाऊं? देखो वो।
8: अरे जीवन काका।
7: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
9: बाबूजी,
7: हाँ?
9: आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
7: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
9: जी,
7: यहाँ लेट जाओ।
9: जी।
7: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु,
8: जी
7: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
8: जी अभी लाई।
7: हाँ हाँ, खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
9: जी।
7: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है।
9: जी।
7: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
9: जी जी जी, जी।
7: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
8: जी, ये नाना जी।
7: हाँ ला बेटा ला। जीवन
9: जी
7: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से

0: देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी, जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी,
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
2: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
2: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
2: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
2: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
2: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे, बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
2: जी।
1: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
2: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
2: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
2: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
2: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
2: जी,
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
2: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
2: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
2: हाँ जी।

0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
1: जी
0: समझ गई ना।
1: जी,
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था।
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं।
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
1: जी,
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं।
1: जी,
0: बोलकर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हाँ?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

अभी यह प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1354वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म देवी से। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और रचनाकार है आनंद बख्शी।

मोहम्मद आजीज, मंजीत, इरफान के स्वर में श्रोताओं लीजिए सुनिए साहिबजादे फिल्म का गीत। गीत रचना शकील बदायूनी की, संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

शकील बदायूनी का लिखा, रवि का संगीतबद्ध किया, ये है गृहस्थी फिल्म का गीत। गायक कलाकार है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी।

उषा मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुने शायद फिल्म का गीत, रचना दुष्यांत कुमार की, संगीत मनस मुखर्जी का।

परिणीता फिल्म से सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में गीत। गीत अरुण कुमार मुखर्जी का लिखा, भरत व्यास ने।

अगला गीत सुनिए, प्यार का सागर फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है प्रेम धवन ने और संगीत से सजाया है रवि ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, गीत राजेंद्र कृष्णा का और संगीत है रामाचंद्रा की, फिल्म का नाम है सगाई।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। पेश है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർസിൽ. ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत

तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरडैम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं शारदा की आवाज़ में चंद गज़लें।

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में शारदा का गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में आपके नाम फिल्मी पैगाम में तहे दिल से स्वागत है।

श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, हमारा नंबर है 9474234000। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9474234000।

कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें आई है ग्वालियर से सुरेश किरण लव्या एस के पप्पी का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं एक दूजे के लिए फिल्म का ये गीत।

अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में सुनिए अगला फरमाइशी गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है सदर बाज़ार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र जय नारायण प्रतीक चौहान ने। फिल्म का नाम है दोस्ती।

अगली फरमाइश हमें आई है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी का। ये श्रोता सुनना चाहते हैं लाल बांग्ला फिल्म का ये गीत।

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईरान, पूजा परिहार ने हमें रन फिल्म के गीत के लिए फरमाइशी भेजा है, तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

फिल्म तेरा तेरे जैसा यार कहाँ से सुनिए अगला फरमाइशी गीत, जिसकी फरमाइश हमें की है नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, कुशाल नीति शाह, मंगला बेन शाह ने।

तेरे जैसा यार कहाँ के फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजे हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी

0: अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में

0: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
1: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहाँ पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50,00,000 पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।

0: विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय दोपहर के 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: seamless banking and many other exciting benefits.
1: Aaj hi visit kare apni nearest SBI branch aur Premier Banking activate kare. Terms and conditions apply. लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी

अभी आप नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम में, वह लाइफ हो तो ऐसी श्रापित जन्नत टू, आशिक बनाया आपने दिल दे दिया है सिंघम बार बार देखो, भाग जौनी तेरे नाल इश्क हो गया हम तुम और रन फिल्म के गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है, इस समय 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

दोस्तों, कुछ रिश्तों को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक एहसास ही काफ़ी होता है। और जब वही एहसास संगीत बन जाए तो हर धड़कन उसे गुनगुनाने लगती है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत

दोस्तों, ज़िंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी कभी बंद नहीं कर पाते। उन पन्नों पर कुछ चेहरे, कुछ आवाज़ें और कुछ गीत हमेशा के लिए रह जाते हैं।

दोस्तों कहते हैं प्यार जब ज़िंदगी में आता है तो सिर्फ दिल नहीं बदलता, पूरी दुनिया ही रंगीन लगने लगती है। हर फूल थोड़ा और महकता है, हर हवा कुछ नया कहती है, इसीलिए इसे प्यार कहते हैं।

हर कहानी का अंत खुशी से नहीं होती, लेकिन कुछ रिश्ते भले ही साथ ना रहें, उनकी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहती है।

दोस्तों, कभी सोचा है? यादें भी कितनी अजीब होती हैं। ना ये दिखाई देती हैं, ना इन्हें छू सकते हैं, लेकिन जब आती है तो पल भर में हमें उन लम्हों में वापस ले जाती है जिन्हें हम कभी जी चुके होते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार। आपके पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बनकर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की होंगी बातें। हर गीत के संग दिल से दिल की मुलाकात होगी। लीजिए, बज उठी है फोन की घंटी, चलिए सुनते हैं कि आज कौन होगा पहला कॉलर। हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम नमस्कार, मैं राम गोपाल बोल रहा था भोपाल से।
0: नमस्कार राम गोपाल जी, आप भोपाल से बोल रहे हैं, तो क्या हाल चाल है वहाँ के?
1: भोपाल के तो अभी बारिश हो रही, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं है, मतलब सामान्य से इस बार बहुत कम है
0: जी। और बताइए राम गोपाल जी कि आप क्या करते हैं?
1: अपना ये मकान वकान बनाने का, ऐसे ठेका वेका ये लेते हैं, मकान बनाते हैं, मिस्त्री का काम भी है, सभी कर लेते हैं, ठेका भी ले लेते हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप घर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं यानी कि?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बड़ा अच्छा लगा कि आप ये मेहनत वाला काम करते हैं। तो इस काम के बीच बीच

0: आप विविध भारती रेडियो स्टेशन सुनते रहते हैं?
1: जी, या अभी भी साइट चलती है तो मैं तो साथ में अपने होम थिएटर वगैरह रखता हूँ, उससे कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
0: तो आपको किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं?
1: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है?
1: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुवाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं, और सुबह चित्त पर संगीत उस 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
0: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम, तालाब वगैरह भी है यहाँ, भोजपुर मंदिर भी है थोड़ा पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए
0: आज। जी, और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म राम जाने का टाइटल सॉन्ग, कहते हैं लोग मुझे राम जाने।
0: तो लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: से बोल रहा हूँ, संजय डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा
1: जी। संतोष जी बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया, तो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
0: हमारा गांव में एक बम्बई हसलन रोड पे है, जेबी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
1: तो देवास जो आपका जिला है वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
0: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
1: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
0: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, मावा बाटी चलती है।
1: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
0: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी देती है।
1: क्या बात है, और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय।
0: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
1: संतोष जी आपने कौन सी फसल बोई है?
0: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
1: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
0: बिल्कुल, जो कुदरती देन से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा क्विंटल ही होती है। जो कुदरती देन से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
1: क्या बात है, और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं आप, कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
0: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बो रहे, कुआ भी है,
1: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
0: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
1: बहुत अच्छी बात है, और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
0: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
1: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि है?
0: जी जी।
1: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
1: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
1: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है। तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की फिर वो झड़े है।
1: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
1: जी।
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डी गुड़िया के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी,
0: क्या बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी, बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप?
1: बस जम के इधर पूरे सबाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं। तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
1: जी, लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है?
1: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती है और मजा आता है। उसका बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं, जिसको प्यार करते उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
1: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
0: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
1: जी,
0: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में?
1: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है, सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
0: जी, और क्या शौक है आपके?
1: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी है, पहले से चला आ रहा लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का।

0: फ्रेश रहता है सभी का।
1: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
0: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है। जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुम्बसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
1: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर?
0: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी।
1: क्या बात है, और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
0: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूं क्या?
1: बताइए बिल्कुल।
0: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
1: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर, मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: ये मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है

0: तो उसमें आप क्या
1: जी
0: करते हैं?
1: जी शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी। जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, एलईडी टीवी वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि
1: जी
0: आप रेडियो के इंजीनियर हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही के बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े मेरा शौक है।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, मैं आपकी
0: जी
1: फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सब ही हमारे फेवरेट प्रोग्राम है। जी
0: अच्छा, ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो
1: जी
0: आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो इसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत में।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है, ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन
1: जी
0: सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह ये सब की फसलें उगाई जाती हैं खरीफ के सीजन में
0: जी
1: हम लोगों के क्षेत्र में। और धान, धान
0: अच्छा,
1: थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
0: और इसके बाद जो सीजन आएगा?
1: रबी फसल का सीजन होता है वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक, मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
0: तो
1: और
0: उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
1: इसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना ये सब बोए जाते हैं उसमें।
0: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो, या मतलब लता जी की आवाज में, माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी
1: नमस्कार
0: पसंद का
1: जी।
0: ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं। अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कांच शॉल होते हैं मैं उसी के साथ उसी का बिजनेस करता हूँ मैम।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए जानकारी।

0: दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम
0: अच्छा, और इनसे आप
1: जी।
0: क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम,
0: अच्छा
1: डिजाइन होते हैं, तो फिर उसी की उसी जो डिजाइन होगा
0: जी
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं, और झीले डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
0: जी,
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो झीले डल में जो हाउस बोट होते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को
0: क्या
1: झीले
0: बात
1: डल
0: है।
1: के।
0: और बताइए, श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
1: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
0: अच्छा, तो
1: जी
0: रेडियो
1: बिल्कुल।
0: सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
0: तो आपको किस तरह के
1: जी
0: गाने पसंद
1: बिल्कुल
0: आते हैं?
1: जी, सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल
0: जी
1: अपना अपना।
0: बिल्कुल, तो बताइए, हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
1: जी एक फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम,
0: क्या बात है,
1: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
0: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इससे मैं राम नरेश कंजर बोल रहा हूँ मैम।
1: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
0: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई गई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
1: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
0: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है उसमें ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
1: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
0: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
1: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
0: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है तिल्ली खाते हैं वो लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
1: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
0: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
1: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
0: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है का प्रबंधन करते हैं, खेत के चारों तरफ जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
1: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
0: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: राम कटारी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना तो आज बहुत बहुत बहुत खुश हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती हैं, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही हैं?
1: मैम गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं, पर राग, मतलब मैं एग्जाम देकर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें। फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी, ऐसा आता है ना सब, वो सीख
0: जी,
1: रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहार राग के हुए एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जनाना जना मोरी बाजे पंजनिया, नि सा ग म प म ग म ग म प नि प नि सा प नि सा नि ध प म प ग म ग रे सा नि सा। जनाना जना मोरी बाजे पंजनिया, नि सा ग म प ग म प नि म प नि सा प नि सा।

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूं।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा, जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी और आपके कार्यक्रम वो विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: जी, निकलता है तो एक बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे?
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास में।
0: अच्छा अच्छा और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं।
1: भारतीय कार्यक्रम हेलो फरमाइश, सखी सहेली, और वो सेतनामा 4 बजे आता है, त्रिवेणी, क्षेत्रीय लोग सभी सुनते हैं, वो चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है। और बताइए अपने गुना के बारे में, बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है,
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो, और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
1: हाँ है, 20 भुजा देवी,
0: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है
0: जी। और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: सभी मिलते हैं कि खाने पीने की सब्जी मंडी, वो तो जिला है अपना गुना। तो
0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है, तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमेरा इतिहास की फिल्म लगा।
0: तो गोपाल जी लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहा है बिमोल बसुमतारी मैम।
0: विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध
0: जी,
1: भारती सुन के रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं।
1: जी। मैं तो मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी। मैम हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया लेडीज हो गया सारा सिलाई करता हूँ मैम
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं।
1: जी।
0: तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए? कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी मैम हम 1200 से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी। मैम हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था
0: तो बकायदा कोई कोर्स
1: अभी
0: किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: जी। उधर दुकान एक था और दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा
0: जी,
1: इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम
0: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं? दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं,
1: जी।
0: सिलाई
1: मैम
0: कोई और करता है?
1: हम खुदे सिलाई भी करता है, खुदे कटिंग करता हूँ मैम
0: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
1: जी। मैम मैं खुदे करता हूँ, मेरा
0: अच्छा,
1: छोटा मोटा दुकान है इसे चल रहा है मैम।
0: अरे वाह। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी मैम हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
0: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
1: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है ना, धान का, वही
0: जी,
1: करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
0: अच्छी बात है। और आसाम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
1: असम का बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामाख्या टेम्पल, वो भी
0: जी
1: ठीक है, और
0: जी
1: कहीं कहीं बहुत है मैम। हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है।
0: बड़ा खूबसूरत सा हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
1: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से और विविध बातें सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है
0: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: जी। मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है,
0: अच्छा
1: जोरहाट है, ईटानगर है, और
0: जी,
1: लखनऊ है,
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
1: जी। मैम हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए
0: तो चलिए
1: जी।
0: आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है, मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288, यानी 02228670288। इसका दूसरा नंबर है 4002466262, यानी 02240024662। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुर लेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक

प्रस्तुत है छाया गीत, सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, एक छोटे से कमरे के कोने में एक लड़की खिड़की के पास बैठी है। खिड़की खुली है, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर उतर आई है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसकी आंखें बार बार आसमान में चांद को देखती हैं और फिर उस रास्ते पर टिक जाती हैं जहां से उसे किसी के आने की उम्मीद है। दूर कहीं नदी के किनारे खड़ा युवक अपनी हथेली हवा में फैलाकर मुस्कुरा देता है और पूरी रात चांद दोनों के बीच एक खामोश संदेशवाहक बन जाता है।

हवा और ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे हैं, जुगनू और चमकने लगे हैं, चांद जैसे मुस्कुरा रहा है। रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि प्यार से भरा हुआ लग रहा है। लड़की ने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला, हवा ने उसकी उंगलियों को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लिया हो और थपथपा दिया हो। तुम आए थे ना, लड़की ने पूछा। उस रात किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया था।

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बांग्ला कार्यक्रम।

0: अभी श्रोता बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, किसान वाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। किसान साथियों, हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। साथियों, माली चाहे किसी पौधे को 100 घड़े पानी से क्यों ना सींच दे, लेकिन उस पौधे पर फल केवल अपने सही मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में कभी उतावले मत बनिए, अपनी मेहनत पूरी रखिए और सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतज़ार कीजिए। साथियों, हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर काम में समय लगता है। आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा प्रयास करके सफलता नहीं पा सकते। आपको हर दिन लगातार मेहनत करनी होगी और सब्र रखना होगा। जब सही समय आएगा तो आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। किसान साथियों, इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, आइए सुनते हैं।
4: किसान भाइयों, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इस कार्ड की सहायता से आप खेती से संबंधित खर्चे जैसे बीज, उपकरण, खाद इत्यादि या अपने किसी और जरूरी कार्य के लिए खर्च कर सकते हैं। अपनी फसल बेचने के बाद आप लोन का भुगतान कर सकते हैं। किसी भी किसान को किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। आपकी अपनी खेती की जमीन हो या आप किसी और के खेत में काम कर रहे हो या किसी और तरीके से कृषि उत्पादन से जुड़े हों, आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, चलिए ये हम आपको बता दें। किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप किसी दुकान पर खरीदारी करने के लिए कर सकते हैं। आप आसानी से खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि खरीद सकते हैं। साथ ही आप कार्ड की सहायता से एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं। आप अपनी फसल के पैदावार के लिए खर्चा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हर वर्ष लोन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ और कैसे मिलता है? आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कॉरपोरेटिव बैंक, सरकारी बैंक या कुछ प्राइवेट बैंक में भी आवेदन कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम है पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, पते का प्रमाण, आपकी फ़ोटो और भरा हुआ आवेदन पत्र। ध्यान रहे कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हर बैंक के नियम और दस्तावेज कुछ अलग हो सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए अपनी निकटतम बैंक शाखा में जाकर पता करें।
3: साथियों, अभी आपने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में ये जानकारी हासिल की। भाइयों, अब कार्यक्रम में हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोरेक्स के प्रयोग से किस सूक्ष्म तत्व की आपूर्ति होती है, ये आपको बताना है। भाइयों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। किसान भाइयों, आप में से अधिकतर किसान साथी मुर्गी पालन करते ही हैं। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि छोटी सी जगह पर घर पर भी वे अगर मुर्गी पालन करते हैं

0: तो उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथियों, आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, देसी मुर्गी पालन, कम लागत ज़्यादा मुनाफा। इस विषय पर विस्तार पूर्वक बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉलीगंज शिव कॉलोनी की श्रीमती जी कमला। आइए सुनते हैं इनके साथ की गई ये बातचीत। कमला जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार मैडम।
0: कब से आप मुर्गी पालन कर रही हैं?
1: हम लोग कब से 15 से 16 साल हो गए मैडम।
0: 15 से 16 साल हो गए मुर्गी पालती हैं
1: जी मैडम।
0: कुल कितनी मुर्गियां होंगी?
1: हम लोग स्टार्टिंग से तीन मुर्गी स्टार्ट करें
0: जी।
1: तीन मुर्गी, अभी दो मुर्गी बैठा है तो एक मुर्गी में 12 अंडा 15 अंडा बैठा देते। बैठाने में उसको बच्चे देने में 21 दिन लगता है।
0: अच्छा,
1: 21 दिन होएगा तो बच्चा निकलेगा। 21 दिन को बच्चा निकलेगा तो फिर हम लोग उसको बाहर करता है। बाहर करके छोटा चावल रहता, छोटा दाना रहता
0: जी जी,
1: वो छोटा दाना बच्चे लोग को डालेगा। फिर हम लोग पानी रखेगा तो थोड़ा हल्दी डाल के थोड़ा पानी मिला के रख देगा तो पानी भी पीते रहेगा, चारा भी करते रहेगा, वो अम्मा साथ में घूमेगा। मुर्गी तो हम लोग को अभी 15 बच्चा निकाला तो उसमें खराब होएगा तो 5 बच्चा खराब हो जाएगा, जैसा दवाना में बैठाना में हम लोग को 10 मुर्गी बच्चा बच जाएगा। फिर दो इसे 45 दिन होएगा तो अम्मा छोड़ने लग जाएगी,
0: वो अपना अलग
1: अपना अलग हो जाएगा, अंडा देने लग फिर अंडा दे देगा
0: जी।
1: फिर ये मुर्गी का हम लोग क्या करेगा, अम्मा मारेगी, मारने से हम लोग साइड करके रख लेगा, वो का अलग से दाना दे के फिर अलग रखेगा, अम्मा को बाहर रखेगा। फिर अम्मा फिर और एक मुर्गी भी इसी तरह एक एक मुर्गी 10 अंडा 12 अंडा देते तो हम लोग को बच्चा, वो भी बारिश के टाइम इतने नहीं बचेगा
0: जी जी,
1: वो धूप के टाइम में हम लोग को बराबर मुर्गी बच्चे मिल जाएगा हम लोग को। हाँ, फिर हम लोग को 6 महीना में 3 केजी मुर्गा होएगा तो 3 केजी होएगा, मुर्गी होएगा तो 1.5 केजी 1 केजी इसके अंदर में मिल जाएगा। फिर वो अंडा 2 बार अंडा देने के बाद ही एक बार बच्चे दिया फिर अंडा दिया फिर दूसरा बार अंडा देने माने के टाइम में 3 केजी करीब आएगा, उसको वजन बढ़ेगा।
0: अच्छा,
1: फर्स्ट में वजन नहीं बढ़ेगा देसी मुर्गी का।
0: अच्छा, जो देसी मुर्गी है जो आप पालती हैं, इससे जो है मुनाफा कितना हो जाता होगा? इस व्यवसाय से आप कितना कुछ कमा लेती होंगी?
1: उसमें कमाता बोलने से हम लोग 500 रुपये केजी है
0: जी,
1: अभी चलता है 500 रुपये केजी तो 600 रुपये चलता, हम लोग पास में लेके जाएगा 500 रुपये। अब 500 रुपये को जो बोले से हम लोग को अभी एक मुर्गी 2 केजी 1.5 केजी में हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: फिर हम लोग एक एक साथ में मुर्गी ज़्यादा हो जाएगा तो बारिश आने के पहले हम लोग को बड़ा करके जल्दी बिक्री कर
0: देगा, बेचना पड़ता है
1: कि बीमार आ जाएगा, ज़्यादा धूप आने से भी बीमार आ जाएगा। हम लोग को थोड़ा पानी की ना जल्दी दे के फिर आराम से आवाज मारने का जैसे रखना।
0: कमला जी, जैसा कि आपने कहा ना कि बरसात से पहले ही आप इनको जो है बेच देती हैं
1: जी,
0: क्योंकि ये बीमारियां आदि
1: बीमारी जल्दी आने से भी हम लोग को
0: तो, लेकिन फिर भी देसी मुर्गी जो पालती हैं आप उसे फायदा होता है?
1: हाँ जी, होता मैडम,
0: फायदा होएगा। क्योंकि दो तरह के होते हैं ना, पोल्ट्री मुर्गी भी लोग पालते हैं और देसी मुर्गी, इसमें काफी फर्क होता है
1: जी,
0: काफी फर्क होता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये देसी मुर्गियां होती है ना, इसके जो शेड होते हैं, इसका फर्श जो होता है, वो किस तरह से आप लोग साफ सुथरा करते हैं, उस बारे में बताएं।
1: जी, हम लोग अभी पक्का डालते नीचे
0: जी,
1: पक्का डालने के बाद में एक भूसी मिलता है मैडम, लकड़ी के भूसे नीचे पक्के में डाल देगा तो उसका गंदगी क्या नीचे चिपकेगा नहीं।
0: अच्छा,
1: फिर ऊपर में मचान डालेगा, मचान के ऊपर में लकड़ी से मचान डालेगा ना
0: जी,
1: फिर उसके ऊपर बैठ जाएगा वो गंदगी क्या, वो भूसी के ऊपर गिर जाएगा।
0: अच्छा,
1: भूसी हम लोग आराम से जाड़ी मार के सूख जाएगा तो जाड़ी मार के कट्टा करके हम लोग कोई पेड़ पौधे के पास डालने से भी गड्ढा खोद देना, गड्ढा खोद के उसमें डालेगा तो पेड़ के भी ताकत मिल जाएगा।
0: अच्छा,
1: अच्छा खाद भी मिलेगी उसको।
0: कमला जी, देखिए ये तो मुर्गी का जब शेड आप बनाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लाइटिंग वगैरह भी होना चाहिए?
1: देसी मुर्गे के लिए इतना लाइटिंग हम लोग डालते नहीं, अपना हम लोग जाके आने के लिए हम लोग लाइट डालता है।
0: छोटे जो मुर्गियां जो बच्चे होते हैं
1: वो बच्चे होते हम लोग अलग से ढक के रखना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, चुहा लोग एक पॉइंट चुहा लोग एरिया आके
0: जी
1: मुर्गी बच्चे लोग पास में जाके गिया तो मुर्गी बच्चे लोग को मर जाएगा, बीमार आ जाएगा जल्दी, चुहा से बड़ा बीमार आता है।
0: अच्छा, बीमारियों की आपने बात की, अब हम यही जानना चाहेंगे कि देसी मुर्गियां होती है इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है?
1: बीमारी हो जाता है तो सिर एकदम पहले नीचे झुका देगा
0: जी,
1: सिर झुकाया बोलने से हम लोग को बीमार आ गया, वो ये मुर्गा के लिए सुंदर देते है उसको एकदम काला हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: काला हो गया तो ये मुर्गे का बीमार हो गया, इसको ज्यादा

0: मुंह से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो हम लोग नहीं कर सकना, फेंक देना,
1: अच्छा
0: वो अच्छे नहीं
1: इसकी
0: आजकल।
1: पहचान आप बड़े आराम से कर लेती होंगी
0: जी हाँ, मालूम हो जाएगी ना मैडम, अभी दाना डालेगा।
1: आप तो मुर्गी पाल रही है,
0: जी
1: और लोग
0: मैडम।
1: इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, कोई सिम्टम होगा?
0: सिम्टम बोले सो खाना दाना नहीं लेगी,
1: अच्छा
0: वो साइड हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा।
1: अच्छा
0: हाँ वो खड़ा हो गया तो फिर हम लोग बोलेगा हाँ ये बीमार है, इसलिए साइड हो गया, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के खाएगा ना सब जो जुमिल के,
1: अच्छा
0: वो साइड हो जाएगा, सुप हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, सो जाएगा। फिर वो टाइम हम लोग समझ के फिर उसको अलग से लेके जाके दवाई देना,
1: जी
0: हल्दी पानी से।

0: जैसा कि आपने बताया कि वेटनरी जाते हैं आप, अभी अगर कोई बीमारियां आ जाती है या वैसे भी मुर्गियों में कुछ टीकाकरण इत्यादि होता होगा,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: आप इन बातों को ध्यान में रखती है? वेटनरी से लोग आते हैं
1: जी हाँ,
0: आपके
1: आता है
0: पास?
1: मैडम का भी आते रहता, साल में एक बार दो बार आएगा, देखेगा, फिर हम लोग दवाई पूछेगा तो होएगा तो देगा, नहीं तो नहीं है बोलेगा, पाउडर देगा।
0: सिर्फ मुर्गियां जब बीमार होती है तभी आप वेटनरी जाती है, ये जो समय समय
1: पहले से
0: पर,
1: ले के रख लेता हम
0: अच्छा,
1: लोग,
0: नहीं, समय समय पर जो टीकाकरण मुर्गियों को दिया जाता है?
1: नहीं, तो उस तरह नहीं होता, उस लोग का आता नहीं है, हम लोग
0: अच्छा,
1: जाके
0: आप
1: बोलेगा
0: लोग
1: तो
0: जाके,
1: हाँ, उस लोग कभी कभी आपके पास कितना जानवर है क्या
0: जी जी
1: है एंट्री करने के लिए आते रहेगा, साल में एक बार आके एंट्री करके जाएगा।
0: अब हम आते हैं अंडों पर, आप क्या अंडे बिक्री करती हैं?
1: जी मैडम,
0: क्या देसी मुर्गी के जो अंडे होते हो क्या भाव बिक जाते हैं?
1: 20 रुपया
0: 20 रुपया। तो कितने अंडे एक दिन में आपको मिल जाते हैं?
1: हम लोग भी 10 मुर्गी रखे तो 10 अंडा,
0: 10 अंडा,
1: 50
0: अच्छा।
1: मुर्गी रहे तो 50 अंडा। अभी हम लोग
0: तो
1: बारिश के
0: आप
1: टाइम
0: रोज
1: में,
0: के रोज अंडे बेच देती हैं या जमा कर लेती हैं?
1: अभी आप लोग पूछ के रख के रहेगा,
0: जी
1: अभी हम लोग कितना अंडा मांगता बोले, हम लोग के अलग से पन्ने में रख के रहेगा,
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: लोग आएगा तो हम लोग देते रहेगा।
0: 20 रुपए के हिसाब।

0: हवा खाने से अच्छे रहेगा।
1: दाने में आप क्या देती हैं?
0: दाने में वही मिक्स दाना
1: जो बाजार में मिलता
0: हाँ,
1: है,
0: बाजार में मिलता है, वही थोड़ा गिल्ला कर देना
1: जी,
0: गिल्ला करके एक एक कटोरे में रख देगा तो खा लेगा,
1: अपने आप खा लेते हैं,
0: अपने खा लेगा। छोटा बच्चा है उसको अलग से छोटा चावल रहेगा, नहीं तो कुछ कुल्ला छोटा छोटा चावल का तरह छोटा बच्चों लोग दे देना, पानी भी रख देना।
1: कितने सालों से कर रही हैं आप मुर्गी
0: हम
1: पालन?
0: लोग 16
1: 16 17 साल हो गए।
0: तो हम लोग बचपन से करती है, वो
1: बचपन से करते
0: हम
1: आ
0: लोग
1: रहे।
0: करते रहते ना।
1: आपके घर में कौन कौन है?
0: हम लोग घर में अभी मेरे हस्बैंड है, हम मैं, मेरे 4 बच्चे,
1: चार बच्चे,
0: एक बच्चे की शादी हुआ है,
1: जी।
0: 2 लड़की बच्चे।
1: तो इस ये जो व्यवसाय आप कर रही हैं, अकेली कर रही हैं या कि बच्चे भी साथ में आपका
0: हम लोग
1: सपोर्ट
0: सब
1: करते
0: मिलके
1: हैं?
0: करते मैडम,
1: सब मिलके
0: सब
1: करते।
0: मिलके करेगा। हम कहाँ भी चले जाएगा तो बच्चे लोग को दाना दे देगा, बच्चे लोग उसको दरवाजा खुला रखता है, उसका अंदर चले जाएगा, अपना अपना जाग में बैठ जाएगा, दरवाजा बंद करने सो जाएगा। हम लोग सब मिलके करते
1: यानी
0: हैं
1: परिवार का पूरा सहयोग आपको है,
0: जी मैडम।
1: आप इस व्यवसाय से खुश हैं?
0: हाँ बहुत खुश है।
1: बहुत खुश है।
0: हाँ
1: तमाम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: महिला के कम देते हैं कि सब लोग घर में बैठने की जगह अच्छे से एक अंडा, अभी मुर्गी एक मुर्गी लाना, ज्यादा मुर्गी नहीं लाना,
1: जी
0: एक
1: जी
0: मुर्गी लाना, बगल वाला से कैसा भी मुर्गा रहेगा। हम
1: वो
0: लोग को तो
1: वैसे भी वो घूम लेते हैं
0: हाँ
1: अपने
0: घूम
1: मोहल्ले में।
0: लेता है,
1: जी
0: घूम लेता है, बोले से बगल वाला से मुर्गा से हम लोग का अंडा का एक मुर्गी से हम लोग का मुर्गी बड़ा हो जाएगा। पहले एक लाना अच्छे से उसको देखभाल करते रहना, अंडा देगा बैठाना, पर एक एक 21 दिन में तो बच्चे दे
1: दे
0: देगा।
1: देगा।
0: दूसरा दिन से हम लोग अच्छे से इसको 2 टाइम दाना देने से बस है, दिन भर देने के लिए नहीं है, 2 टाइम दे देना। हम लोग अभी कहाँ जाता है बोले से थोड़ा पानी दाना दे देना रख के, फिर आके हम लोग थोड़ा पानी डालने से हो जाएगा, दाना डालने से इतना तकलीफ नहीं है, कोई भी कर सकते मैडम, ये आराम से काम है।
1: बहुत ही अच्छा संदेश
0: अच्छा
1: आपने
0: हाँ
1: दिया कमला जी
0: अपना
1: की
0: गर्मी में हम लोग बच्चे के खाने के लिए दिल हुआ, अच्छे दिन आया एक आटा बच्चे लोग आराम से दिया काटने के लिए, अच्छे लगेगा बच्चे
1: बाजार से
0: लोग
1: खरीदने जाओ तो एक 800-900 रुपये देने
0: जगह
1: पड़ते हैं।
0: बढ़ता है। हम लोग का अंडा भी खा सकेगा, मुर्गी भी खा सकेगा, और हम लोग बच्चा लेकर पैसा भी आ जाएगा बिक्री करने से।
1: बिल्कुल,
0: बहुत फायदे हैं।
1: बहुत फायदा है। चलिए, सुनने वाले भी आज
0: इस
1: आपकी
0: तरह
1: बातों को सुन करके मुर्गी पालन अवश्य
0: जी मैडम
1: करेंगे। कमला जी, आज आप इतनी सारी बातें हमसे साझा किए, अपने बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद है मैडम।
1: देसी मुर्गी पालन, कम लागत ज्यादा मुनाफा। साथियों, इस विषय पर अभी आपने ये बातचीत सुनी, उम्मीद करते हैं इनकी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा संगीत।

0: वायु गीत का आनंद तो आपने ले लिया, और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है मौसम पर आधारित कृषि परामर्श देने का। साथियों, अगले कुछ दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा कुल वर्षा लगभग 75 मिलीमीटर रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 85 से 87% तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 73 से 77% के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 23 से 29 किलोमीटर घंटा रहने तथा हवा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। आकाश में बादल छाए रहने तथा बादल युक्त रहने की संभावना है। किसान भाइयों, मौसम के मुताबिक आप कृषि पर जो कार्य करेंगे, आइए उस पर भी हम आपको बता दें। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। किसानों को वर्षा रहित अवधि में कृषि कार्य करने तथा जल भराव के बचाव के लिए खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। वर्षा से ठीक पहले या वर्षा के दौरान उर्वरकों एवं पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग न करें। आर्द्र मौसम में कीट एवं रोगों के प्रकोप की नियमित निगरानी करें। कटाई की गई उपज एवं पशु आहार को स्वच्छ रखें। सूखे और हवादार स्थान पर रखें। भारी वर्षा एवं मेघ गर्जन के दौरान पशुओं को सुरक्षित आश्रय में रखें। फसल विशिष्ट सलाह जो दी गई है वो किसान साथियों को बताया गया है कि धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर स्थिर जल की गहराई बनाए रखें तथा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के बाद पर अनुशंसित नाइट्रोजन की मात्रा का 1/4 भाग डालें। विशेष रूप से फसल की प्रारंभिक अवस्था में धान के खेतों का नियमित निरीक्षण कर कीट एवं रोगों के प्रकोप की निगरानी करें। बागवानी करने वाले किसानों को बताया जाता है अदरक और हल्दी के खेतों में जहां पिछले हफ्ते हुई बारिश से मिट्टी हट गई है, वहां पौधों के आधार को ठीक करने और बाहर निकली हुई जड़ों को ढकने के लिए मिट्टी चढ़ाने का काम करें। अतिरिक्त पानी निकालने और ऊंची क्यारियों को और नुकसान से बचाने के लिए पानी की सही निकासी का इंतजाम करें। पशुपालन किसानों को सलाह दी जाती है पशुओं में मद चक्र के लक्षणों की नियमित निगरानी करें तथा देखे गए मद के लक्षणों के आधार पर कृत्रिम गर्भाधान प्रातः या सायंकाल के समय करें। दोपहर के समय कृत्रिम गर्भाधान करने से बचें। मछली पालन किसानों को सलाह दी गई है कि वर्षा के बाद तालाब के पानी के पीएच की निगरानी करें। यदि पीएच 6.5 से कम हो जाए तो तालाब के पानी का पीएच स्तर बनाए रखने के लिए धूप वाले मौसम में कृषि चूना 150 से 200 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से डालें। साथियों, ये था मौसम पर आधारित कृषि परामर्श जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से प्राप्त हुई थी। साथियों, कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। किसान साथियों, हमने आपसे पूछा था कि बोरेक्स के प्रयोग से किस सूक्ष्म तत्व की आपूर्ति होती है। भाइयों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बोरेक्स के प्रयोग से बोरोन सूक्ष्म तत्व की आपूर्ति होती है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। साथियों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले अंक में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब पेश है श्री मोहन सिंह सिंगाल का लिखा रूपक, रविंद्र का बचपन।

0: आओ बच्चों, आज हम तुम्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के बचपन की कहानी सुनाते हैं।
1: अच्छा, तो क्या रविंद्रनाथ बचपन से ही कहानियाँ लिखने लगे थे?
0: अरे भाई, उनकी लिखी हुई कहानी नहीं, उनके अपने बचपन की कहानी।
1: अच्छा, तब तो जरूर सुनाइए।
0: हाँ तो सुनो, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि रविंद्रनाथ का जन्म आज से 100 साल पहले कलकत्ता शहर में जोड़ा सांको के प्रसिद्ध ठाकुर परिवार में हुआ था।
2: जी हाँ, ये तो मालूम है। अच्छा दादा, कलकत्ता तो भारत का सबसे बड़ा शहर है ना? सुना है वो बड़ा शानदार शहर है।
0: हाँ है तो, पर हम तुम्हें जिस कलकत्ते की बात बता रहे हैं वो आज का नहीं, 100 बरस पहले का कलकत्ता था।
1: अच्छा, तो 100 बरस पहले का कलकत्ता क्या आज से कुछ अलग था?
0: कुछ नहीं, एकदम अलग था। आज की तरह तब वहाँ इतनी बड़ी और लंबी चौड़ी सड़कें नहीं थी, ट्रामे, बसें और मोटरें नहीं थी, थीं सिर्फ घोड़ा गाड़ी और पालकी, पर इनमें सिर्फ अमीर लोग ही चला करते थे।
1: तो क्या रविंद्रनाथ भी कभी पालकी में बैठे थे?
0: हाँ हाँ, जरूर बैठे थे, और एक नहीं कई बार। पर चूंकि पालकी चारों तरफ से बंद होती थी और उसे 2 या 4 आदमी कंधों पर उठाकर चलते थे, अक्सर उन्हें उसमें बैठकर ऐसा महसूस होता था मानो भीतर के घुप अंधेरे में उनका दम घुटा जा रहा।
2: लेकिन दादा, अगर बंद पालकी में आदमी बैठा करते थे तो औरतें किस सवारी में चला करती होंगी?
0: ये तुमने खूब पूछा। बंद पालकी या बंद घोड़ा गाड़ी ज्यादातर औरतों के ही लिए थी। इनमें बैठकर वे मंदिर, गंगा स्नान या कहीं शादी ब्याह में जाया करती थी। रविंद्रनाथ ने अपनी दादी की पालकी को तो, जिसमें गोटा जरी का काम किया हुआ था ना, नवाबी ठाट की पालकी बताया है। क्योंकि उस समय स्त्रियां बड़े कड़े पर्दे में रहती थी और आम तौर पर घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उनके कभी कदास बाहर जाने के लिए भी डोलियां और घोड़ा गाड़ियां बंद होती थी। कभी कभी तो इन पर एक और कपड़ा भी डाल दिया जाता था।
2: तो क्या तब लड़कियां भी पालकी में ही चलती थी? अरे, पढ़ने कैसे जाती होंगी?
0: अरे, तब लड़कियों की शिक्षा होती ही कहां थी, इसलिए उनका घर से निकलना भी बंद ही था। हाँ, कुछ संपन्न घरों में कभी कभी लड़कियों को भी धर्म ग्रंथ पढ़ने और चिट्ठी पत्री लिखने लायक शिक्षा घर पर ही दी जाती थी।
1: तब क्या रविंद्रनाथ फिर घर पर ही पढ़े थे?
0: हाँ, अमीर घरों के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा तब ज्यादा घर पर ही होती थी।
1: अच्छा, तब तो सारे दिन में घर पर ही रहते होंगे, बड़ा मजा आता होगा उन्हें दादा।
0: हाँ, सो तो आता ही था।

0: भाई इससे पढ़ाई में उनका मन भी कम ही लगता था, इसीलिए रविंद्रनाथ ने अपने बचपन के इस समय का बालक नामक कविता में बड़ा मजेदार वर्णन किया है।
1: तो सुनाइए ना वो कविता, हम सुनेंगे।
0: भाई रविंद्रनाथ की लिखी मूल कविता तो बंगला में है, हाँ उसका हिंदी भावार्थ तुम्हें सुनाई देते हैं। अच्छा सुन। तब मेरी उम्र बड़ी कच्ची थी और शरीर बड़ा दुबला पतला, मैं एक ऐसे पक्षी की तरह था जिसके अभी पंख नहीं निकले थे। पास की छत पर से कबूतरों का झुंड उड़कर आता और बरामदे के रेलिंग पर से कौवा काँव काँव करता। नीचे गली में मछलियां बेचने वाला गमछे से ढकी मछलियों की छबड़ी सिर पर लिए हाँक लगाता। छत पर दादा कंधे पर वायलिन टिकाए मानो सांझ के तारे के सुर से उसका सुर साधते। मैं भी अपना अंग्रेजी का पाठ छोड़कर घर की बहु बेटियों के दल में जा जुड़ता। वे लाल किनारे की साड़ी पहनती और लंबा घूंघट निकालती। मैं चुपके से उनका चाबियों का गुच्छा चुराकर फूलों के गमले की मिट्टी में छिपा देता था। और भी कई शरारतों से मैं उन्हें स्नेह के क्रोध से उत्तेजित कर देता था। संध्या होते होते किशोरी चटर्जी आ धमकता। उसके बाएं हाथ में गुड़गुड़ी होती थी और कंधे पर चादर। ऊंचे स्वर में वो लवकुश की कविता पढ़ने लगता और मेरा सारा लिखना पढ़ना सब धरा रह जाता। मन ही मन मैं भी सोचता कि अगर किसी तिकड़म से मैं भी ऐसे गायकों की किसी मंडली में भर्ती हो जाता तो मैं तो कभी ऊपर के क्लास में चढ़ने की बात ही मन में उठती और मैं गाने सुनता सुनता नए नए गाँव की सैर करता। एक दिन छुट्टी के बाद स्कूल से लौटने पर मैंने देखा कि हमारे घर के ठीक ऊपर बादल घिराए, आसमान फाड़कर मूसलाधार वर्षा होने लगी। रास्ते में पानी भर गया और सब पानी भरे नाले मानो एरावत की सूंड से दिखाई पड़ने लगे।
2: सचमुच ये तो बड़ी मजेदार कविता है दादा। तो क्या नाचना गाना उन्हें बचपन से ही अच्छा लगता था?
1: और सूखी किताबी पढ़ाई उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं?
0: हाँ सो तो है ही, उन्होंने खुद इसे माना भी है और इसी अनुभव से तो उन्होंने बाद में बच्चों की शिक्षा प्रणाली में खेल कूद तथा नाच गाने को विशेष स्थान देने पर जोर दिया।
1: लेकिन दादा आपने तो कहा ना कि वो घर पर ही पढ़ा करते थे, जरा उनकी पढ़ाई के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: अच्छा तो सुनो, रविंद्रनाथ के ही शब्दों में, उनकी शिक्षा की मशीन सुबह से शाम तक चला करती थी। इस मशीन में चाबी भरने का काम था उनके मंझले भाई का, वे बड़े कड़े शासन करता थे। उन्होंने रविंद्रनाथ के छोटे से दिमाग पर विद्या का इतना अधिक माल लादना चाहा कि वो छकड़ा ही उलट गया। उनको जो जो पढ़ाने की कोशिश की गई ज्यादा दिन नहीं चली, जो कुछ उन्होंने पढ़ा सीखा अपनी इच्छा से ही।
2: तो दिन भर वो करते क्या थे
0: उसका किस्सा भी सुनो। सुबह उजाला होने से पहले ही वे उठ जाते थे, फिर हाथ मुंह धोकर कुश्ती का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाते थे। घर के उत्तर की ओर खाली पड़ी कुछ जगह को खोद खाद कर उसकी मिट्टी में मनो तेल डालकर अखाड़ा तैयार किया गया था। यहीं एक पहलवान उन्हें कुश्ती के दाव पेच सिखाया करता था।
1: तो क्या घर के सभी बच्चों को कुश्ती लड़ना सिखाया जाता था?
0: हाँ क्यों नहीं भाई, शरीर को ठीक रखने के लिए व्यायाम जरूरी जो है।
1: पर हमने तो सुना है कि रविंद्रनाथ बड़े नाजुक शरीर के थे।
0: हाँ ये सच है, इसीलिए कभी कभी जब वे ज्यादा देर तक कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते थे तो उनकी माँ को ये अच्छा नहीं लगता था।
1: अच्छा तो कुश्ती के अभ्यास के बाद वो क्या करते थे?
0: उसके बाद नहा धोकर जो ही वे तैयार होते थे तो शरीर विज्ञान पढ़ाने वाला डॉक्टर आ जाता था।
2: अच्छा फिर इसके बाद क्या होता था?
0: इसके बाद ठीक 7 बजे गणित का मास्टर आ जाता था। ये स्लेट पर पेंसिल से सवाल करते और वो बोर्ड पर खड़िया से मुश्किल सवालों को हल करता। इसके बाद आते साहित्य और प्रकृति विज्ञान के मास्टर।
1: बाप रे, शुरू से ही इतने विषय।
0: अभी क्या हुआ है, अभी जरा और सुनो। इसके बाद आते संस्कृत के मास्टर जो सारे रूप कंठस्थ कर लेने पर जोर देते।
1: तो क्या एक साथ इतने विषय पढ़कर रविंद्रनाथ थकते नहीं थे?
0: भाई थकते चाहे ना हो पर ऊब जरूर जाते थे और याद करने के बदले काफी पढ़ा हुआ भूल भी जाते थे।
2: तब फिर स्कूल तो क्या जाते होंगे?
0: नहीं भाई नहीं, घर की इस पढ़ाई के बाद उन्हें स्कूल भी जाना पड़ता था। सूखी किताबी पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं थी, इसीलिए कभी कभी माँ से पेट दुखने का बहाना बनाकर स्कूल की नागा भी कर देते थे। उन दिनों लड़कियों को पढ़ाया नहीं।

0: सो कई बार रविंद्रनाथ ने कहा, अच्छा होता अगर वे लड़का होने के बजाय लड़की होती।
1: अच्छा, अब उनके खाने पीने के बारे में बताइए।
0: हाँ, वो भी सुनो, वो भी बताता हूँ। 9 बजे तक उनकी पढ़ाई का ये क्रम पूरा हो जाता था, फिर एक नौकर आकर उन्हें नहलाता था, 9:30 बजे वे खाना खाते थे। पर खुद रविंद्रनाथ ने कहा है कि भाई इस रोज के एक से खाने में उनकी कोई रुचि नहीं रह गई थी।
1: अच्छा, तो फिर वो क्या करते थे?
0: इसके बाद ठीक 10 बजे पालकी या घोड़ा गाड़ी में बैठकर वे स्कूल जाते थे, जहां से तीसरे पहर 4 बजे छुट्टी होती थी। रविंद्रनाथ ने इसे 10 से 4 बजे तक का अंडेमान कहा है।
2: इसका क्या मतलब?
0: भाई तुम्हें मालूम ही होगा कि अंग्रेजी शासन काल में जिन्हें काले पानी की सजा मिलती थी ना, उन्हें अंडेमान भेज दिया जाता था। सो रविंद्रनाथ जी भी 10 बजे से 4 बजे तक के स्कूल के जीवन को काले पानी की सजा समझते थे।
1: बात तो कुछ कुछ ठीक लगती है।
0: भाई कुछ भी हो, पर ये क्रम 4 बजे ही खत्म नहीं हो जाता था। स्कूल से घर लौटते ही जिम्नास्टिक का मास्टर हाजिर मिलता था। वो इन्हें 2 डंडों पर 1 घंटे तक शरीर को तौलना और उलट पुलट करना सिखाता था।
1: तब तो वो और भी थक जाते होंगे।
0: इससे क्या हुआ, जिम्नास्टिक के मास्टर के जाते जाते ही चित्रकला सिखाने वाला मास्टर आ पहुंचता था।
1: मार दिया।
2: बाप रे, ये तो अच्छी पढ़ाई हुई।
0: पर अभी पूरी कहां हुई, अंधेरा होते ही दीवट जल उठता था।
1: पर दादा, दीवट क्यों?
0: भाई इसीलिए कि तब कलकत्ते में न तो बिजली थी और न गैस। सभी घरों में अरंडी के तेल के दिए या मिट्टी के तेल की लालटेनें जलती थी। रविंद्रनाथ जिस कमरे में बैठकर पढ़ा करते थे उसमें 2 बत्तियों वाला दीवट जला करता था।
1: तो क्या उससे काफी रोशनी हो जाती?
0: बिजली या गैस जितनी तो नहीं, पर हाँ किताब के अक्षर पढ़ने लायक रोशनी तो रहती ही थी।
2: अच्छा, तो यहाँ वे कब तक पढ़ते थे?
0: भाई इस समय वे ज्यादातर अंग्रेजी ही पढ़ा करते थे। अक्सर वे जिल्द बंदी किताबों पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम ही अदल बदल कर बार बार लिखा करते थे।
1: ये शौक तो मुझे भी रहा है दादा।
0: अच्छा, लेकिन भाई मास्टर इसे पसंद नहीं करता था। वो कुछ लिखने के बजाय पढ़ने पर ही ज्यादा जोर देता था। शरीर को हिलाते हुए मुंह से जोर जोर से पाठ दोहराना पड़ता था। अक्सर हिलते हिलते उन्हें ऊंग आने लगती थी, तब मास्टर इन्हें डांटने फटकारने के बाद छुट्टी दे दिया करता था।
1: तो क्या ये वहीं सो जाया करते थे?
0: नहीं, पढ़ने का कमरा तो बाहर बैठक के पास था, उससे एक तंग अंधेरी गली में होकर भीतर के हिस्से में जाना पड़ता था।
2: बाप रे, अंधेरी तंग गली में से?
0: हाँ।
2: तो क्या इन्हें डर नहीं लगता था?
0: नहीं, लगता क्यों नहीं था, जरूर लगता था। इस गली से एक और जाफरी लगी थी जिसमें कहीं कहीं से प्रकाश झांकता था, बाकी चारों तरफ तो अंधेरा था ही। वहां से गुजरते हुए रविंद्रनाथ को ऐसा लगता मानो कोई इनका पीछा कर रहा हो। किसी नौकरानी के मुंह से इन्होंने सुना था कि वहां भूत रहता है। कोई कोई कहता कि वहां उसने एक काली मूर्ति सी खड़ी देखी थी।
1: तो क्या रविंद्रनाथ सचमुच से डरते थे?
0: भाई बचपन में ऐसी बातें अक्सर सभी को डराती हैं, पर एक बार उन्होंने बड़ी अकड़ के साथ कहा कि भूत भूत कुछ नहीं होता। नौकरों ने ताना मारते हुए कहा था कि अगर किसी दिन उसके चंगुल में फंस गए सारा पढ़ा लिखा भूल जाओगे। हाँ,
1: पर मैंने तो सुना है कि वो भूत के डर से ही अंधेरे में छत पर भी कभी नहीं जाते थे।
0: हाँ, ये भी सच है। भाई ठाकुर परिवार के सब लोग तब ऊपर के मंजिल में रहते थे और नीचे के सीलन भरे तहखानों में अक्सर नौकर चाकर, वे दुर्बल और काले कलूटे तो होते ही थे। अक्सर उनके पास से गुजरते हुए रविंद्रनाथ को उनकी आंखें, कान, नाक और दांत आदि भूतों की तरह बड़े बड़े भौंडे और डरावने दिखाई पड़ते थे। पर जब बिजली आ गई और सब कुछ साफ दिखाई पड़ने लगा तो उन्होंने कहा कि लगता है इसकी तेज रोशनी में सारे भूत सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
2: तब क्या उनकी माँ ने ये डर भगाने की कोई कोशिश नहीं की?
0: अरे भाई माँ को भला इसके लिए फुर्सत ही कहाँ थी। रविंद्रनाथ के भीतर पहुंचने के समय उनके ताश की खेल की बैठक जमी होती। आखिर रविंद्रनाथ की जिद करने पर वे ताश का खेल छोड़कर आती, उन्हें खाना खिलाती और फिर उन्हें पलंग पर लिटाकर किसी नौकर या नौकरानी से उन्हें कहानी सुनाने को कहकर चले आती।
1: तो क्या रविंद्रनाथ को भी मेरी तरह कहानी सुनने का शौक था?
0: वो भला किस बच्चे को नहीं होता, तुम्हें तो है ना। इनकी कहानियां भी बस एक से एक बढ़कर हुआ करती थी।
1: कैसे, जरा बताइए ना।
0: अच्छा तो सुनो, बड़े घर के बेटे और सुंदर होने के कारण घर के नौकर चाकर सभी रविंद्रनाथ को राजपुत्र कहकर पुकारा करते थे। क्योंकि वे अक्सर पालकी में ही चला करते थे इसलिए उन्हें ऐसी ऐसी कहानियां गढ़कर सुनाई जाती थी जिनमें राजपुत्र पालकी पर चढ़कर देश देशांतरों की सैर करता था। जब कहानी खत्म हो जाती तो रविंद्रनाथ पूछते, फिर क्या हुआ?

0: काम मिलता फिर राजकुमार नहीं लौटा, या आगे की कहानी कल सुनाई जाएगी।
1: तो क्या उन्हें बस राजकुमार की ही कहानियाँ सुनाई जाती थी?
0: हमेशा तो नहीं, पर हाँ अधिकांश कहानियों का नायक कोई राजकुमार ही होता था, जो आधी कल्पित होती थी और आधे रविंद्रनाथ स्वयं। जैसे एक बार वे किसी मछुए की नौका पर जा रहे थे कि अचानक जोर का तूफान उठा, नौका जोरों से डामाडोल होने लगी। रविंद्रनाथ को कुछ भयभीत देखकर माझी ने कहा, अरे बाबू घबराओ मती। रविंद्रनाथ ने कहा, कहीं नौका उलट तो नहीं जाएगी? माझी बोला, अरे नहीं बाबू, और उलट भी जाए तो मेरा तुम्हारा तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता।
2: कैसे?
0: इसके बाद उसने कहानी सुनाई।
2: अच्छा।
0: एक बार एक राजकुमार मछली पकड़ने निकला, रास्ते में भयानक तूफान आया, नौका उलट गई, पर राजकुमार बचकर एक द्वीप पर जा पहुंचा। वहां खड़ा था एक बाघ, राजकुमार को देखते ही वो डरकर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से पेड़ जड़ से उखड़कर नदी में जो गिरा, और बाघ भी उसी पानी में बह गया।
2: अच्छा, फिर क्या हुआ?
0: फिर बहते बहते बहते बहते बाघ घुस आया माझी के खेत में। उसने अपनी रस्सी में एक गोला बनाया और उसे घुमाकर बाघ की ओर फेंका, वो जाकर गिरा उसकी गर्दन में और बाघ के गले में फांस पड़ गई। तब उसने बांस के सहारे बाघ को फिर नदी में उतारा। 10-15 घंटे का 20 कोस का रास्ता 1.5 घंटे में ही पार कर लिया।
2: ये तो बड़ी खतरनाक कहानी है दादा, क्या ऐसा संभव है?
0: भाई ये हम क्या जाने, पर खतरनाक नहीं, साहसपूर्ण काम। अगर ये कहा जाता कि बाघ ने राजकुमार या मांझी को खा लिया, तब उससे क्या साहस बढ़ता?
1: अच्छा, ऐसी ही और कोई कहानी भी है क्या?
0: भाई एक दो नहीं, अनगिनत हैं। एक कहानी है मगरमच्छ की। ऐसा हुआ कि एक बार नदी के किनारे बैठा अब्दुल गंडासे से कुट्टी काट रहा था। उसके बकरे बकरी बासे बंधे थे। एकदम नदी में से एक मगरमच्छ ने आकर एक बकरी को जबड़ों से दबाया और पानी में खींच ले गया। बस कूद कर अब्दुल उसकी पीठ पर जा बैठा और उसकी गर्दन पर गंडासों से कई वार किए। बस घायल मगरमच्छ के मुंह से बकरी तो छूट गई और वो पानी में डूब गया।
2: तब तो रविंद्रनाथ पर भी इन कहानियों का बड़ा असर पड़ा होगा।
0: हाँ हाँ अवश्य, वे भूतों या पशुओं से डरना एकदम भूल गए थे। देवी देवताओं को दी जाने वाली पशु बलि की कहानियां सुनकर उन्होंने एक लकड़ी का शेर बनाया था। अक्सर उस पर काठ की तलवार का वार कर जो उसकी बलि दिया करते थे। और भाई डाकुओं की साहस की कहानियां भी उन्हें बहुत पसंद थी।
2: तो क्या कहानियां सुनते सुनते वो सो जाया करते थे?
0: हाँ, पर हमेशा नहीं, अक्सर कहानी खत्म होने पर पूछते थे, आगे क्या हुआ? बना बनाकर कहानी कहने वाला हिम्मत हार कर कह दिया करता था, पता नहीं फिर राजकुमार कहाँ चला गया।
2: और रविंद्र चुप हो जाते या सो जाते थे?
0: नहीं, कोमलमती बालक रविंद्रनाथ अपने दिमाग और कल्पना के सहारे भी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। कभी कभी तो नींद आ जाने पर वे सपने में भी राजकुमार को न जाने किन दूर दूर के द्वीपों और देश देशांतरों की सैर कराया करते थे। अक्सर वे कहा करते थे कि उनका राजकुमार न जाने किस अजाने देश को चला गया है, क्या मालूम कि लौटेगा या नहीं।

श्रोताओं, अभी आप रूपक सुन रहे थे रविंद्र का बचपन। लेखक व प्रस्तुतकर्ता थे श्री मोहन सिंह सिंघार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। आइए अब सुनते हैं गौरव गान।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार। तत्पश्चात लघु रूपक प्रसारित किया जाएगा, सांप्रदायिक सहभाव शांतिपूर्ण जीवन के लिए अनिवार्य है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंडमान निकोबार भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समक्ष रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल और विकास से जुड़ी मांगे रखी। जल संकट से निपटने की बड़ी पहल, अंडमान निकोबार में 13,000 मिलियन लीटर क्षमता के 2 जलाशयों की DPR तैयार करेगा CWC। अंडमान निकोबार में मसाला खेती को मिलेगा बढ़ावा, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 3 दिवसीय प्रशिक्षण में किसानों को वैज्ञानिक खेती और प्रसंस्करण की जानकारी दी गई। और आपदा के समय जनजातीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर, राजधानी श्री विजयपुरम में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। अंडमान निकोबार भाजपा इकाई ने द्वीपवासियों से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समक्ष मांगे रखी है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने पंचायतों और श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार बहाल करने, पंचायतों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने तथा वर्ष 2012 की अनुदान अधिसूचना को पुनः लागू करने की मांग की। उन्होंने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए डोमिसाइल कानून लागू करने और पंचायतों को कुल योजना राशि का कम से कम 30% आवंटित करने का भी आग्रह किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में जीबीपंत अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने, NIMS को एम्स के अधीन लाने तथा गंभीर मरीजों के लिए सस्ती हवाई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। आयुष्मान भारत के तहत मुख्य भूमि के अस्पतालों तक मरीजों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा देने का भी सुझाव दिया गया। पेयजल संकट के समाधान के लिए धन्नीखाड़ी बांध के पास अतिरिक्त जल भंडारण की व्यवस्था और अलग जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं ग्रेट निकोबार परियोजना से प्रभावित कैम्बलबे के लोगों को भूमि और कृषि पौधों का उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा,
6: माननीय अमित शाह जी आए तो हमने 11 पॉइंट, उस पॉइंट लोकल भी मुद्दे थे कि जो होने वाले हैं, पूरा अंडमान निकोबार की जनसंख्या उन पर निर्भर है। और लोखंडे जी ने, जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार ने बताया भी था, नए जनरेटर सेट खरीदे गए, परमानेंट समाधान था हमारा नया पावर हाउस बन के तैयार हो, जिससे साउथ अंडमान से लेकर के श्री विजयपुरम से लेकर के डिगलीपुर तक पावर का समस्या का समाधान हो। 50 मेगावाट LNG गैस प्लांट का होप टाउन में, उस पर काम NTPC के द्वारा बहुत जोर तरीके से चल रहा है। एक गुप्तापाड़ा में डैम बनने जा रहा है और एक मक्का पहाड़ में। और अगर 2 साल लगातार बारिश नहीं भी आई तब भी हमको डेली पानी मिलेगा, ऐसा 18 महीने के अंदर में अंडमान में होने जा रहा है। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए काम करूंगा। एक IPL मैच होता है या एक कोई टेस्ट मैच होता है या एक कोई वनडे मैच होता है तो कम से कम 10-20-30 हजार लोग वहां पर आते हैं घूमने के लिए। आदमी जब आता है तो बोलते हैं चलो मैच भी देखेंगे और अंडमान निकोबार में घूम के भी आएंगे।

अंडमान निकोबार प्रशासन और केंद्रीय जल आयोग CWC के बीच मक्का पहाड़ और गुप्तापाड़ा में दो बड़े जलाशयों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें गुप्तापाड़ा में 4000 मिलियन लीटर और मक्का पहाड़ में 9000 मिलियन लीटर क्षमता के जलाशय प्रस्तावित है। प्रशासन के अनुसार तेजी से बदलती जलवायु और बढ़ते विकास के कारण श्री विजयपुरम में जल संकट को देखते हुए ये परियोजनाएं जल सुरक्षा मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगी। CWC अगले 18 महीनों में DPR तैयार करेगा। आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं से करीब 13,000 मिलियन लीटर अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता विकसित होगी, जो मौजूदा धनीखाड़ी बांध की शुद्ध क्षमता से 1.5 गुने से अधिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है वैज्ञानिक खेती और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार के द्वीपों में मसाला फसलों की वैज्ञानिक खेती और कटाई के बाद प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कैरी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसानों और अन्य हितधारकों को काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, हल्दी, लौंग और जायफल जैसी मसाला फसलों की वैज्ञानिक खेती, पौध तैयार करने और प्रसंस्करण की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को पौधों के प्रवर्धन की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही सिप्पीघाट स्थित बागवानी अनुसंधान फार्म का भ्रमण कर मसाला फसलों की विभिन्न खेती प्रणालियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीपों में मसाला क्षेत्र की संभावनाओं से किसानों और युवाओं को परिचित कर इसे लाभकारी व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देना था। श्री विजयपुरम के गोलघर स्थित आपदा प्रबंधन भवन में आज जनजातीय कल्याण विभाग एवं अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय बुनियादी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में आपदा से बचाव, पूर्व चेतावनी, सुरक्षित निकासी, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी गई। आपदा प्रबंधन निदेशक प्रियंका कुमारी ने कहा कि आपात परिस्थितियों में जनजातीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनमें आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ा

कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में आपदा से बचाव, पूर्व चेतावनी, सुरक्षित निकासी, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी गई। आपदा प्रबंधन निदेशक प्रियंका कुमारी ने कहा कि आपात परिस्थितियों में जनजातीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनमें आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने में प्रशिक्षित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 43 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। उत्तर एवं मध्य अंडमान में युवाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सुशांत पाधा ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान माई भारत के माध्यम से युवाओं के लिए चलाए जा रहे केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और उनके लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम की ओर से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय बच्चों में हर्निया रहेगा। जीवीपंत अस्पताल एनिम्स के बाल शल्य चिकित्सा विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अख्तर खावरी विशेषज्ञ के रूप में दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। दर्शक इस सीधे फोन इन कार्यक्रम में 2447 45 या 2456 62 नंबर पर फोन करके शामिल हो सकते हैं। एचटी लाइनों के रखरखाव और साफ सफाई के कारण 22 अगस्त को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक की जाएगी। इस दौरान टैरलाबाद और बिमलीटान क्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेंगे। यह कार्य मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगा। दक्षिण अंडमान के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के अनुसार राज्य पुलिस के जवानों द्वारा कल से 28 अगस्त तक NSCBPTI बर्ड लाइन प्रातरापुर स्थित रेंज में फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। बर्ड लाइन और प्रातरापुर के निवासियों से अपील की गई है कि अभ्यास के दौरान वे स्वयं और अपने पशुओं को फायरिंग रेंज से दूर रखें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समक्ष रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल और विकास से जुड़ी मांगें रखी। जल संकट से निपटने की बड़ी पहल। अंडमान निकोबार में 13,000 मिलियन लीटर क्षमता के 2 जलाशयों की DPR तैयार करेगा CWC। अंडमान निकोबार में मसाला खेती को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 3 दिवसीय प्रशिक्षण में किसानों को वैज्ञानिक खेती और प्रसंस्करण की जानकारी दी गई। और आपदा के समय जनजातीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। राजधानी श्री विजयपुरम में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत,
3: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी,
4: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
0: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक,
5: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर,
6: यन पॉलिसी यन कयल।
0: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-7 पर कॉल करें।
7: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
8: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीपों के कई भागों में वर्षा हुई। जनसेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि द्वीपों के एक दो भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति

0: की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की आशंका है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। समुद्र काफी अशांत रहेगा। ऐसी स्थिति में मछुआरों को 22 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल और अब जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी जॉली बॉय मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान 22 अगस्त को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी सेंटिनल इन्हीं स्थानों के लिए 22 अगस्त को संध्या 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान 23 अगस्त को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी कैंबल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल 21 अगस्त को रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान 22 अगस्त को सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस जहाज की इसी क्षेत्र के लिए आगामी यात्राएं 23 अगस्त को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से होगी और वापसी लिटिल अंडमान से 23 अगस्त को रात 9 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार की यात्रा पर 22 अगस्त को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी 23 अगस्त को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट अपनी अगली यात्रा पर 27 अगस्त को सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तरीसा कचालवा नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी 30 अगस्त को दोपहर 12 बजे कैंबल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैंबल बे नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए 25 अगस्त को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान 27 अगस्त को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से छूटकर इन्हीं जगहों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। अब सुनिए कल जाने वाले जलयानों के बारे में। एमवी रंगत स्वराज द्वीप लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानी चंगा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड हमारी आर्ट कल्चर हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता उसकी ब्यूटी हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी आर्ट कल्चर इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेंजी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज।

0: money, and I urge everybody to participate fully in this.
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग। श्रोताओं, अभी आप मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, अभी आप आई फिल्म में बेला शिंदे और शिंदे की आवाज़ों में इस गीत को सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था इशात कामिल ने व धुन बनाई थी ए आर रहमान ने।

लता मंगेशकर व साथियों की आवाजों में श्रोताओं अभी आप जवानी फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। श्रोताओं, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं पर समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जीवन में परिस्थितियाँ कभी भी हमारे मन के अनुसार नहीं चलती। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी हर कदम पर कठिनाइयाँ सामने खड़ी दिखाई देती है। लेकिन यही कठिनाइयाँ हमारे भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने का अवसर देती है जिसके बारे में हम स्वयं भी अनजान होते हैं। सफलता केवल मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं बल्कि उन रास्तों पर चलते रहने का नाम है जहाँ बार बार गिरने के बाद भी इंसान उठने का साहस रखता है। जी दोस्तों, इसी विचार के

0: साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, आज गुरुवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, उच्च रक्तचाप, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्त का दबाव सामान्य स्तर से अधिक बना रहता है। इससे अक्सर मुख रोग कहा जाता है क्योंकि कई बार इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। यदि रक्तचाप लंबे समय तक अधिक रहे तो यह हृदय, मस्तिष्क, गुर्दों और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं यह वार्ता।

सुबह का समय था, घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। पिता रोज की तरह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। माँ रसोई में व्यस्त थी और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में सब बदल जाएगा। अचानक पिता के हाथ से कप गिरा, चेहरा पीला पड़ गया और सीने में तेज दर्द उठने लगा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यह लंबे समय से नियंत्रित नहीं था। यह कहानी केवल एक घर की नहीं बल्कि लाखों परिवारों की सच्चाई है। एक ऐसी बीमारी जो बिना शोर किए शरीर के भीतर धीरे धीरे जहर की तरह फैलती रहती है। न शुरुआत में दर्द, ना कोई बड़ा संकेत, ना कोई स्पष्ट चेतावनी, फिर भी यह इंसान के दिल, दिमाग, किडनी और पूरे जीवन को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती रहती है। यही कारण है कि हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है।

हर वर्ष 17 मई को मनाए जाने वाला वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पूरी दुनिया को इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास करता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि उच्च रक्तचाप केवल एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर खतरा है जो समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। यह अभियान वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों के सहयोग से दुनिया भर में चलाया जाता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हाइपरटेंशन तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। पहले यह बीमारी बढ़ती उम्र के लोगों में अधिक दिखाई देती थी, लेकिन अब युवा भी इसके चपेट में आ रहे हैं। देर रात तक जागना, तनाव, अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड, शारीरिक गतिविधियों की कमी और मानसिक दबाव ने इसे आधुनिक जीवन की सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक बीमारियों में बदल दिया है।

हाइपरटेंशन का अर्थ है रक्तचाप का सामान्य स्तर से अधिक बढ़ जाना। जब हृदय शरीर में रक्त को तेजी से पंप करता है और धमनियों पर दबाव पड़ता है, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। सामान्यतः 120/80 को स्वस्थ रक्तचाप माना जाता है, लेकिन जब यह लगातार 140/90 या उससे अधिक रहने लगे तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोगों को वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि वे इस बीमारी से पीड़ित हैं। वे सामान्य जीवन जीते रहते हैं जबकि उनके शरीर

के भीतर यह बीमारी धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती रहती है। इसी कारण इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। यह चुपचाप शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करती रहती है। कई बार पहला संकेत ही हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेल होना बन जाता है। डॉक्टरों के अनुसार दुनिया में हर साल लाखों मौतों के पीछे अनियंत्रित उच्च रक्तचाप एक प्रमुख कारण है।

हाइपरटेंशन केवल शरीर की बीमारियां नहीं बल्कि जीवन शैली का आईना भी है। आज इंसान मशीनों के बीच जी रहा है। सुबह से रात तक काम का दबाव, करियर की चिंता, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक प्रतिस्पर्धा और डिजिटल दुनिया की भागदौड़ ने मानसिक शांति छीन ली है। लोग बाहर से मुस्कुराते दिखाई देते हैं लेकिन भीतर तनाव का पहाड़ लेकर जी रहे होते हैं। यही मानसिक दबाव धीरे धीरे रक्तचाप को बढ़ाता है। कई बार हम अपने शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, बेचैनी, धुंधला दिखाई देना या दिल की धड़कन तेज होना, ये संकेत शरीर हमें समय रहते देता है। लेकिन व्यस्तता के कारण लोग इन्हें सामान्य मानकर टाल देते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती है।

भारतीय समाज में एक बड़ी समस्या यह भी है कि लोग नियमित स्वास्थ्य जांच को ज़रूरी नहीं समझते। जब तक बीमारी गंभीर ना हो जाए तब तक डॉक्टर के पास जाने से बचते रहते हैं। खासकर पुरुष अक्सर अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं। वे परिवार की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के शरीर की सुनना भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि यदि घर का एक सदस्य बीमार पड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। हाइपरटेंशन केवल अमीर या बूढ़े लोगों की बीमारी नहीं है। गांवों से लेकर महानगरों तक, मजदूर से लेकर कॉरपोरेट कर्मचारियों तक, हर वर्ग इसका शिकार हो सकता है। आज स्कूल और कॉलेज के छात्र भी तनाव और खराब जीवन शैली के कारण इसके जोखिम में हैं। मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया ने शारीरिक गतिविधियों को कम कर दिया है। बच्चे मैदानों से दूर होते जा रहे हैं और युवा घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर जीवन गुजार रहे हैं। इसका असर केवल शरीर पर नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।

खान पान की बदलती आदतें भी इस बीमारी का बड़ा कारण है। पहले घर का सादा भोजन स्वास्थ्य का आधार था, लेकिन अब पैक्ड फूड, जंक फूड और अत्यधिक नमक तेल वाला भोजन आम हो गया है। पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स का बढ़ता चलन शरीर को धीरे धीरे बीमार बना रहा है। अधिक नमक विशेष रूप से रक्तचाप बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि भोजन में नमक की मात्रा नियंत्रित रखनी चाहिए, लेकिन स्वाद की आदतें अक्सर स्वास्थ्य पर भारी पड़ जाती हैं। धूम्रपान और शराब भी हाइपरटेंशन के बड़े कारणों में शामिल हैं। कई लोग तनाव कम करने के लिए सिगरेट, धूम्रपान इत्यादि का सहारा लेते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि यह अस्थायी राहत भविष्य में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। निकोटीन और अल्कोहल धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं और हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं।

हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। जब रक्तचाप लगातार बढ़ा रहता है तो दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, धीरे धीरे हृदय कमज़ोर होने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह यह दिमाग की नसों को भी प्रभावित करता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। किडनी, आँखें और शरीर के अन्य अंग भी इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन इस बीमारी का एक सकारात्मक पहलू भी है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि समय रहते जागरूकता और सावधानी बरती जाए तो हाइपरटेंशन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है नियमित जांच। ब्लड प्रेशर की जांच में केवल कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन यह कुछ मिनट किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं।

स्वस्थ जीवन शैली हाइपरटेंशन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और तनाव मुक्त जीवन रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। रोजाना सुबह की सैर, योग और ध्यान न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मन को भी शांति देते हैं। भारत की प्राचीन योग परंपरा आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का आधार बन रही है। प्राणायाम और ध्यान जैसी विधियां मानसिक तनाव को कम करने में बेहद प्रभावी मानी जाती है। परिवार भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि घर के लोग एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखें, समय पर दवाइयां लेने की याद दिलाएं और स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करें तो बीमारी पर नियंत्रण आसान हो जाता है। कई बार मरीज केवल इसलिए लापरवाह हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वे ठीक हैं, लेकिन हाइपरटेंशन में नियमित दवाइयाँ और निगरानी बेहद ज़रूरी है।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आधुनिक जीवन की चमक तमक के बीच हम अपनी सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। सफलता पैसा और उपलब्धियां तभी मायने रखती हैं जब शरीर स्वस्थ हो और दिल सही तरीके से धड़क रहा हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, स्कूलों में बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली की शिक्षा दी जाए, कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएं और लोगों को यह समझाया जाए कि तनाव और गलत आदतें धीरे धीरे जीवन को ख़त्म कर सकती हैं।

हमें यह भी समझना होगा कि मानसिक शांति स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी दवाइयाँ। हर समय चिंता और प्रतिस्पर्धा में जीना शरीर को भीतर से कमजोर कर देता है। कभी कभी परिवार के साथ बिताया गया समय, खुलकर हंसना, प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना और खुद को आराम देना भी दवा का काम करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि शरीर हमारा सबसे बड़ा साथी है। यदि हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन वही शरीर जवाब दे देगा। हाइपरटेंशन हमें यही संदेश देता है कि छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े संकट का कारण बन सकती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि हाइपरटेंशन वास्तव में एक साइलेंट किलर है जो बिना आवाज किए जीवन को खतरे में डाल देता है। लेकिन जागरूकता, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली से इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हमें केवल बीमारी के बारे में नहीं बल्कि जीवन की अहमियत के बारे में भी सोचने का अवसर देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अपनों के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिताने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अंत में इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी किसी दौलत या सफलता से नहीं बल्कि स्वस्थ दिल की धड़कनों और अपनों की मुस्कान से मिलती है। और यदि हम सच में अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो हमें अपनी सेहत को भी उतना ही महत्व देना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान ही अपने सपनों को जी सकता है और परिवार को खुश रख सकता है और जीवन की खूबसूरती को महसूस कर सकता है।

अभी आप सुन रहे थे यह वार्ता, जिसके वार्ताकार और लेखक है युवा दीपक कुमार सिंह। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं आपको युवा ऋषिता की स्वरचित कविताएं।
1: दोस्तों मेरी पहली कविता का नाम है कुछ अल्फाज खुद के लिए। एक ऐसा भी चरण था जब हार मैंने मान ही लिया था। एक ऐसा भी चरण था जब हार मैंने मान ही लिया था। लोगों की बात सुनकर एक पल मेरे भी कदम डगमगाए। जब सारी कोशिशें असफल हुई तब सारे लोग सिर्फ मुझे नाकामयाब बुलाए। सिर्फ वो मेरी मन की आवाज ही थी

जिसने मुझे हर पल एक नई उम्मीद दी। वह मुझसे कहती रही, मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ अच्छा कर सकती हूँ। कभी सोचा ना था मैंने यहाँ तक भी आ पाऊंगी, जो दिल में आए खुल के कह पाऊंगी। मेरे मन को विश्वास था मुझ पर, तो मैंने भी मन का मान रखा। मुश्किलों को हराकर, अपने सफलता के रास्ते खुद बनाकर आगे मैं बढ़ती गई। याद है मुझे, जब खुद को सबसे कम समझती, रोती, शिकायतें करती, खुद को बस कोसती रहती, उन सभी बातों को पीछे छोड़कर अब आगे निकल आई हूँ। मुश्किल हालात में भी अब मुस्कुराई हूँ। दोस्तों, बार बार कोई उम्मीद देने आएगा नहीं, बार बार तुम्हारा हौसला बढ़ाएगा नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे मन की आवाज ही होगी जो तुम्हें हमेशा प्रेरित करेगी, तुम्हें तुम्हारे आंसुओं को पोंछकर फिर से मुस्कुराने की किरण दिखाएगी। कितने ही लोगों ने मुझे भी नीचे गिराना चाहा, कितने ही लोगों ने मुझे भी नीचे गिराना चाहा, पर मेरी हिम्मत ही ऐसी थी कोई गिरा ना पाया। गलतियां तो बहुत की मैंने, पर जिंदगी का भी दिल इतना बड़ा उसने मुझे माफ कर हमेशा गले से लगाया। आखिर कौन जानेगा मुझे मुझसे बेहतर, मैं काफी हूँ मेरे लिए। बहुत कुछ सीखा है मैंने और बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर जिंदगी को खुल के जीना सीख जाऊँ उतना भी काफी है। हर बेरंग दुखों के आलम में वो खुशी के गुलाल से खुद को रंग जाऊंगी। एक रिश्ता जो मेरा है खुद से, उसे अब बेहतर बनाऊंगी। जमीन पर रहकर आसमान को छूने के ख्वाब है मेरे, तो ठोकर खाकर भी बेहतर बनना चाहूंगी। जमीन पर रहकर आसमान को छूने के ख्वाब है मेरे, तो ठोकर खाकर भी बेहतर बनना चाहूंगी। पर फिर एक सवाल उठा मन में, क्या मैं इतनी काबिल हूँ? पर फिर एक सवाल उठा मन में, क्या मैं इतनी काबिल हूँ? तो जवाब मैंने खुद को दिया, हाँ हूँ मैं काबिल, हाँ हूँ मैं काबिल। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है एक अच्छा और कामयाब इंसान बनना, इसलिए एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में सब भागते रहते हैं, पर दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए बेहतर बनना तुम। क्योंकि याद है ना, जब हर जगह शोर था, तब तुम्हारे मन की आवाज ने तुम्हें शांत किया था और तुम्हें तुमसे मिलाया था और तुम्हें तुमसे मिलाया था। दोस्तों, मेरी अगली कविता का नाम है सबसे अनमोल क्या है। मैं धूप से आग मिलाने चली, पर मुझे तो बारिश मिली। सारे काम धरे के धरे रह गए, इंतजार की घड़ी से बंधने लगी। हालात के हाथों आखिर कौन यहाँ कुछ कर पाया है? जो हारा वो हार गया, पर जिसकी लड़ाई जारी थी वही सिकंदर कहलाया है। पर लड़ाई कहाँ आसान होगी, शिद्दत से जिसका जिक्र किया था रब से तुमने। रब भी कहता, दुआ तो कबूल होगी तेरी, पर क्या तुम उससे पहले उसकी कीमत चुका पाओगे? कई चुनौतियां आई, सबसे मैं भी लड़ती गई। एक चुनौती आई जहां मैं भी घबरा गई। बार बार तबीयत का यू खराब होना मुझे शूरवीर से शून्य बनाता गया। तन मन में सिर्फ अपने हाल पे गुस्सा सा आता गया। तो सब कुछ छोड़ मैं अपने तबीयत सुधारने में लग गई। एहसास हुआ कि सारे मौके छूटने लगे हैं, अपने सपनों से ही हार गई। रात दिन बस पछतावा ही पछतावा था कि कहां मैं अपनी स्वास्थ्य ठीक करने में लगी हूँ और जिंदगी के सारे कीमती चीजें मुझसे दूर होते जा रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भागना ही तो बस काम है, जहाँ आराम का नाम भी काम है। उससे छुट्टी मिली पर कारण जुखाम है। कोसने लगी फिर जिंदगी को, रब से भी फिर खूब शिकायत की। कोसने लगी फिर जिंदगी को, रब से भी फिर खूब शिकायत की। पर बुखार में तपकर पूरे शरीर में एक ऊर्जा आई, ऊर्जा ने उम्मीद जगाई कि देख कितना काबिल है तू। इसलिए कभी कभी खुद को साबित करने से ज्यादा खुद का ख्याल भी रखा करो। असली खजाना तेरे खुद के हाथों में है, पहचान खुद की लकीरों को, बाकी सब तो यहीं छोड़ जाना है। क्या सोच में हो अब भी, बंद कर अपने हाथों की मुट्ठी। वक्त तो निकलता जाएगा, रुक तू और रख ले ख्याल, वरना यह मौका फिर ना आ पाएगा। संतुलित आहार, सरल जीवन, स्वास्थ्य का मोल अनमोल है। जिसने यह पहचाना, उसका भी जीवन मुश्किलों से घिरा, पर अब जीवन सरल है। स्वास्थ्य है जीवन की नींव, इसके बिना कुछ भी मिल जाए सब कुछ है बेकार। तन खुश तो मन भी प्रसन्न, जीवन में हो आहार हरा भरा

0: स्वास्थ्य भी होगा लाजवाब, रत्नों की चमक भी ढल जाएगी, तराश खुद को या उम्र भर तुम्हें शानदार बनाएगी। रत्नों की चमक भी ढल जाएगी, तराश खुद को या उम्र भर तुम्हें शानदार बनाएगी। रख ले ख्याल, बाकी सब व्यर्थ है, स्वास्थ्य ही तेरा सब कुछ है। रख ले ख्याल, बाकी सब व्यर्थ है, स्वास्थ्य ही तेरा सब कुछ है।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है शेफ फिल्म से, जिसे गाया है अरमान मलिक ने, गीत लिखा है रश्मि विराग ने और इस गीत की धुन तैयार की है अमाल मलिक ने।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है

0: दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।

0: जुड़वा 2 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था मीट ब्रोस और नेहा कक्कर ने। सोनू सागो का लिखा हुआ गीत था और इस गीत की धुन बनाई थी मीट ब्रोस ने। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।

कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं उफ़ क्या जादू मोहब्बत है फिल्म का ये गाना। इस गीत को गाया है सुनिधि चौहान ने और इनके साथ गायकी में इनका साथ दिया है कुणाल गांजावाला ने। महबूब के बोल को सुरों में फिरोया है संदेश शांढलिया ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए अब सुनते हैं जूली फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल को सुरों में ढाला है राजेश रोशन ने।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस

0: एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techy new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 78401 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देख सकते हैं।
3: Play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट, कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट, कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गौरव गान।

श्रोताओं अभी आप गौरवगान का आनंद ले रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहे ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक

0: देश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
1: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
3: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट

0: हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरविंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: अरविंद जी, भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र में पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है और स्वच्छ जल होना एक समस्या भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। तो आपके अनुसार आने वाले जो वर्ष हैं, एक या दो दशक की हम बात करते हैं, तो भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता किस तरह की होनी चाहिए?
2: मेरी दृष्टि में अगले 10 से 20 साल के वर्षों के बीच भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कृषि क्षेत्र में मांग पक्ष प्रबंधन, सिस्कर सिंचाई दक्षता में सुधार। कारण स्पष्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल दोहन करता है और कुल जल खपत का लगभग 80% कृषि में होता है, जिसका अधिकांश भाग परंपरागत बाढ़ सिंचाई में नष्ट हो जाता है। पंजाब हरियाणा राज्यों में धान जैसी जल गहन फसलें उगाना भूजल स्तर को खतरनाक स्थिति से गिरा रहा है। आपूर्ति की समस्या में कहीं अधिक रचनात्मक असंतुलन का मामला है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहन है, फसल विविधीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में सुधार तथा भूजल दोहन का पर सख्त

0: विनियमन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, साथ ही शहरी औद्योगिक क्षेत्र में अपशिष्ट पुनर्चक्रण यानी कि जो दोबारा यूज करना होता पानी को, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, अंतर राज्य नदी जल विवादों के लिए एक सशस्त कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थागत ढांचे की अवस्था आपूर्ति को बढ़ाने के बजाय मांग को तर्क संगत बनाना ही दीर्घकालीन जल सुरक्षा की वास्तविक कुंजी है।
1: अरविंद जी, भारत के कई हिस्सों में देखा गया है कि भूजल का स्तर गिरा है और कृषि और जो घरेलू जरूरतों के लिए जल की आवश्यकता होती है, वो जाहिर सी बात है कि भूजल पर भी उसकी निर्भरता हमारी अधिकतर रहती है। तो क्या भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त है या फिर हमें भूजल के दोहन और खपत को नियंत्रित करने के लिए भी नीतिगत बदलाव करने आवश्यक है?
0: नहीं, केवल भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है। पुनर्भरण आपूर्ति पक्ष का समाधान नहीं है, जबकि असली समस्या मांग पक्ष के अनियंत्रित दोहन में निहित है। जब तक निकासी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक बनी रहेगी, कोई भी वाटरस्टेट कार्यक्रम दीर्घकालीन संतुलन नहीं ला सकता। इसलिए बड़े नीतिगत बदलाव अनिवार्य हैं। इसका केंद्र बिंदु होना चाहिए भौगोलिक परिस्थिति आधारित कृषि यानी जियोग्राफी बेस्ड एग्रीकल्चर। पंजाब, हरियाणा, आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में धान जैसी गहन फसल उगाना पारिस्थितिक दृष्टि से भूल है, जबकि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद नीति द्वारा कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित होती रहनी चाहिए। अतः आवश्यक तीन स्तर पर बदलाव होना चाहिए। पहला, फसल विविधीकरण, धान से मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन जैसी कम जल गहन फसलों को बढ़ाना, विशेषकर मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देना, जल दक्षता भी है और पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी है। दूसरा, क्षेत्र विशिष्ट फसल योजना एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग यानी हर क्षेत्र की मिट्टी जल उपलब्धता के अनुसार फसल पैटर्न तय करना, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति थोपना। तीसरा, मूल्य और सब्सिडी नीति में सुधार, मुफ्त एवं अत्यंत सस्ती बिजली जैसी व्यवस्थाएं जो भूजल दोहन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करती है, उन्हें फसल विशिष्ट प्रोत्साहन ढांचे से बदलना चाहिए। पुनर्वरण आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं। असली समाधान यह कि हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुरूप खेती करें।
1: अरविंद जी, भारत की हम बात करें या फिर कहीं दुनिया भर के किसी भी हिस्से की बात करते हैं, तो पाइपलाइनों में रिसाव होना और नलों से जो पानी बर्बाद होता है, ये एक बड़ी समस्या है। इससे जल की बहुत हानि होती है। जल वितरण का जो हमारा एक ढांचा है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिसाव होने के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारा अच्छा पानी बर्बाद होता है। तो किसी भी नए जल स्रोत को विकसित करना अधिक जरूरी हो जाता है या फिर जो हमारी पहले से ही मौजूदा वितरण दक्षता है उसे और हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरह की चीज को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए?
0: नए जल स्रोत विकसित करने से पहले मौजूदा वितरण दक्षता सुधारना कहीं अधिक तर्कसंगत और लागत प्रभावी प्राथमिकता है। तर्क सीधा है, जब घर पहुंचने से पहले आधा पानी बर्बाद हो रहा हो तो नए स्रोत जोड़ना केवल उसी टपकते बर्तन में पानी भरने जैसा है। नवीनतम आंकड़े इस समस्या की गंभीर समस्या को स्पष्ट करते हैं कि भारत की शहरी जल आपूर्ति कंपनियां औसतन करीब 38% पेयजल को गैर राजस्व जल के रूप में गंवा देती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य 15-20% से लगभग दुना है। नीति आयोग के अनुसार जो स्थिति चिंताजनक है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का लगभग 40-50% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जबकि सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता मात्र 30-38% के बीच में है। ये आंकड़ा दो बड़े निहितार्थ रखता है। मतलब पहला तर्क है कि आप पानी यानी जिस पहले ऊर्जा और लागत को खो चुके होते हैं, जल का 40% अधिक रिसाव में नष्ट हो रहा हो, तो नए जलाशय नदी जोड़ो परियोजना में निवेश करने से पहले इस अदृश्य हानि को रोकना कहीं सस्ता पड़ता है। दूसरा, नए स्रोत विस्तृत करने का अर्थ है प्राय अधिक भूजल दोहन या नई नदी घाटी परियोजनाएं होता है, जो पहले से तनावग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालती है। इसके बजाय जिला मीटर्ड क्षेत्रों के माध्यम से नॉन रेवेन्यू वाटर बजट का प्रतिकरण करके राज्य वित्त आयोग की नीतियों को सत्यापन आयोग जल हानि की कमी से जोड़कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निवेश परिणाम आधारित हो।
1: अरविंद जी, अभी जो दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है, इंटरनेशनल समिट ऑन स्मार्ट एंड सस्टेनेबल वाटर सिस्टम, तो इस सम्मेलन की विषय वस्तु रखी गई है तकनीकी और पहुंच के बीच से। तो हम स्मार्ट जल तकनीकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश के जो छोटे शहर हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन तक इन तकनीकों की कैसे पहुंच सुनिश्चित की जा सकती, ताकि जो भी हम योजनाएं बनाते हैं उनका लाभ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित ना रहे, उसका लाभ सभी तक पहुंचे?
0: जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, एक्चुअली वो उन लोगों के लिए, हम दो तरह की योजनाओं पर बात करें, टॉप डाउन और बॉटम अप। यानी कि किसी भी प्रबंधन का मेन तरीका है कि हम बायलॉज हैं और रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, उनका उपयोग किस तरह से जमीन स्तर पर पहुंच पाए। अब वो उस क्षेत्र तक किस तरह से पहुंच पाएगी, उसके लिए हमें पहले दो स्तर पर काम करना पड़ेगा। पहले हमें ऊपर स्तर पर योजनाएं इस तरह की बनानी पड़ेंगी कि ताकि हर चीज को हम कवर कर पाए। दूसरा, हमें इस तरह से करना पड़ेगा ताकि जो योजनाओं का लाभ है वो जिले स्तर से, गांव स्तर से पहुंच पाए, तक पहुंच पाए, और वो भी उसमें शामिल हो।
1: अरविंद जी, जैसे भी देश

0: में मॉनसून का समय चल रहा है, लगातार बारिश की स्थिति हम देख रहे हैं, और ये भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बारिश का जो जल है उसे संचित करना आवश्यक है, इसके लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए और तमाम इसके लिए प्रयास भी किए गए, अमृत सरोवर बनाए गए और भी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए। ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जल तो काफी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उसका वास्तविक रूप से हम ना तो उसे इकट्ठा कर पाते हैं, ना ही उसका ठीक से दोहन कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक के तौर पर लोगों किस तरह की चीजें करनी चाहिए, कैसे उनकी योजनाएं होनी चाहिए, किस तरह से वो काम करें कि जल की बर्बादी कम से कम हो।
1: अगर हम बात करें आज से 30-35 साल पहले, तो एक प्रति व्यक्ति जो जरूरत थी वो 150 लीटर के करीब होती थी। अब जल तो उतना ही रहा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही और डिपेंडेंस बढ़ती रही, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी टोटल जनसंख्या का जो है, अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए 16% है, केवल हमें 4% पानी मिलता है। ज्यादातर पानी, चूंकि इस पिछले 10-20 सालों में आपने देखा होगा कि शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, लोग
0: जी
1: ग्रामीण क्षेत्र से बहुत जल्दी विस्थापित होकर शहर की तरफ आए हैं, तो उनकी आवश्यकताएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे उनसे अलग तरह की हो गई हैं। तो अब गांव में भी जल की आवश्यकता है, तो किसी तरह से हमें कहीं ना कहीं हमारे जो स्रोत थे, यानी कि आपने सुना होगा कि हमारी अमृत सरोवर योजना बनी, तो उसका पर्पस ये था कि हर गांव में शहर में कई तरह के तालाब हों, ताकि वो आपकी रोज की जरूरतों को जो है, जो आपकी रोज की जरूरतें हैं उनको पूरा करते रहे। अब रोज की जरूरतें आपकी खाद्यान्न से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि फिशरीज है जैसे, अब पानी से पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल भी है, तो वो भी पूरी होती रहे, और इसके अलावा आप किसी तरह से अपनी जिंदगी को, मतलब आपका सबसे बड़ा गाँव में रहने वाले को, जैसे पहले बताया था कि हम ज्यादा जरूरतें जो हमारी हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि
0: जी
1: 40-80% पानी एग्रीकल्चर चला जाता है, तो किस
0: बिल्कुल।
1: तरह से हम कौन से पानी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा भविष्य का रहेगा।
0: अरविंद जी, शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन जैसी तकनीकें उद्योगों में पानी की खपत और अपशिष्ट जल बहाव को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इन तकनीकों की लागत अधिक मानी जाती है, तो ऐसे में जो छोटे और मध्यम उद्यम है या एक बहुत ही छोटे स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है, वो किस तरह की गतिविधियों को अपनाए जिससे कि उसको वित्तीय लागत भी उस पर कम आए और जो अपशिष्ट जल निकलता है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके ताकि बर्बादी कम हो।
1: एक बेहद चिंता का विषय है, मतलब ये कि हम किस तरह से कर पाए। तो शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन की, क्योंकि जल जैसी तकनीकों की ऊंची पूंजीगत लागत छोटे मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी बाधा है। बड़े कॉर्पोरेट इसे वाहन कर सकते हैं, पर एमएसएमई इसके लिए नीति का आकार बनाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। तो हमें एक तो आम आदमी के लिए और हमारे उद्योग धंधे किस तरह हम कर पाएंगे, मेरी राय में तीन स्तरों पर संरचित होनी चाहिए। पहला, पूंजीगत सब्सिडी ब्याज सहायता, जैसे एमएसएमई मंत्रालय की मौजूदा ZLD इफेक्टिव जो योजना है वो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं 30-40% सीधा अनुदान दे के इसको हम रियायती करके हम लोगों को उससे सीधा जोड़ सकते हैं।
0: अरविंद जी, आज के दौर की अगर हम बात करते तो हमने देखा कि हमारे पास जल की उपलब्धता तो आसानी से हो जाती है, शायद यही कारण है कि उसकी इम्पोर्टेंस को एक सामान्य व्यक्ति उतनी ज्यादा नहीं दे पाता है, कहीं ना कहीं गलतियां सभी से हो जाती हैं कि जल की बर्बादी बढ़ती जा रही है, इसे न्यूनतम करने के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं?
1: पानी जो है वो पोर्टेबल, जिसे आप बोल रहे हैं पोर्टेबल नीड के हिसाब से जो हमें करना है, तो हम अपने व्यक्तिगत जो हमारे यूज में पानी आता है उसको कम से कम हम उस पर लाए चीजों पे, तो उससे हम बर्बादी बचा पाएंगे। और जैसे आपने सुना हो सिंगापुर में कई जगह पे रिसाइकल वाटर का यूज हो रहा है, अभी हमारे लिए वो चीजें उतनी उपयोगी नहीं बन पाई, लेकिन एक आम आदमी में केवल मतलब कुछ तकनीकी का सुधार करके हम, या उनको समझा के किसी तरह से पानी के मामले में जागरूक बना सकते हैं।
0: अरविंद जी, कृषि का जो क्षेत्र है भारत में पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ पर जो शुद्ध जल है, पेयजल के रूप में भी हम पानी का काफी इस्तेमाल कृषि में करते हैं, और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने की भी हमारे देश में काफी संभावनाएं हैं, तो क्या सूक्ष्म सिंचाई, स्मार्ट सिंचाई और मिट्टी की नमी की वास्तविक समय निगरानी जैसी जो तकनीकें हैं वे व्यापक स्तर पर अपनाई जा सकती हैं और कृषि क्षेत्र में पानी की खपत को कम कर सकती हैं?
1: हाँ, संभावना बहुत बड़ी है, पर व्यापक अपनाना अभी बाकी है। कृषि भारत में जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और दलवाई समिति के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन से 40% तक जल बचत, 45% उत्पादन वृद्धि, 50% आय वृद्धि संभव है। वाड़ सिंचाई की तुलना में इससे औसतन 30-50% औसतन करीब करीब 32.3 जल की बचत होती है, साथ ही बिजली और उर्वरक की खपत भी घटती है। अब इसमें क्या चैलेंज है, क्षमता बनाम वास्तविकता। सो भारत का माइक्रो इरिगेशन कवरेज 70 MHA की संभावना के मुकाबले केवल 17 MHA है, यानी कि क्षमता का 1/4 है। कारण है ऊंची शुरुआती लागत, जागरूकता की कमी और मुफ्त सस्ती बिजली जो ड्रिप अपनाने का आर्थिक तर्क कमजोर करती है। नीतिगत सहारा है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यम योजनाएं हैं, सोलर पंप है, प्रधानमंत्री

0: कृषि संचय योजना है पर ड्रॉप पर क्रॉप के तहत उपकरणों पर 55% तक अनुदान और नाबार्ड का 5,000 करोड़ का सूक्ष्म सिंचाई कोष विस्तार में मदद कर रहे हैं। स्मार्ट एग्रिक सिंचाई मृदा नमी सेंसर इसे अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। रियल टाइम डेटा से पानी सिर्फ जरूरत पर दिया जाता है ना कि निश्चित शेड्यूल पर, जिससे बचत संभावना है। निष्कर्ष ये सिद्ध करता है, फायदा स्पष्ट है कि एक चुनौती जिसके कारण सस्ती फाइनेंसिंग, बिजली मूल्य सुधार और किसान प्रशिक्षण जरूरी है।
1: अरविंद जी, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो जल प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वास्तविक समय का आंकड़ा विश्लेषण के इस्तेमाल की जो चर्चा है वो भी तेजी से बढ़ रही है। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल प्रबंधन की किस समस्या को सबसे प्रभावी ढंग से हल कर सकता है? यानी कि पानी की पाइपलाइन में रिसाव को, मांग के अनुमान को, भूजल प्रबंधन या फिर जल शोधन की जो दक्षता है उसमें।
0: मेरी विश्लेषणात्मक राय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकट भविष्य में सबसे प्रभावी ढंग से पाइपलाइन रिसाव, गैर राजस्व यानी नॉन रेवेन्यू वाटर जिसे बोलते हैं, की समस्या हल कर सकता है, क्योंकि यहाँ तकनीक और आवश्यकता के बीच तालमेल सबसे स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित पाइपलाइन मानचित्र यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन मीटर क्षेत्र की अनुपस्थिति सक्रिय जल प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण जल उपयोगिता संस्थाएं प्राय रिसाव एवं पाइपलाइन विफलता के बाद भी प्रतिक्रिया देती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसे AI आधारित प्रिडिक्टिव मॉडल द्वारा तुरंत हल कर सकते हैं। रिसाव होने के इंतजार के बजाय पैटर्न समझ के पहले से चेतावनी, व्यावहारिक उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु जल आपूर्ति जो मल निकासी बोर्ड ने पानी की चोरी, रिसाव, गैर राजस्व वाटर कम करने के उद्देश्य से स्मार्ट टेरा एवं सोलिनियस जैसी स्टार्टअप के साथ AI व रोबोटिक तकनीक पर संयुक्त अध्ययन शुरू किया है। इसी तरह 2026 के राष्ट्रीय AI समिट ऑन वाटर में गैर राजस्व वाटर घटाने, डेटा संचालित नागरिक केंद्रित उपयोगिताओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। मांग पूर्ण मान यानी कि कैसे पता लगा लें, भूजल प्रबंधन दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परंतु रिसाव नियंत्रण में AI का तुरंत प्रभाव, मापन योग और आर्थिक रूप से स्वतः वित्तीय पोषण तक यानी कि जानकारी देना, क्योंकि बचाया गया हर लीटर पानी सीधे राजस्व में बदलता है, इससे निवेश जल्दी वसूल हो जाता है। यही कारण है कि पहला सबसे व्यावहारिक मोर्चा बनाना चाहिए।
1: अरविंद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

कार्यक्रम संदेशे आते हैं में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने पसंदीदा गाने को सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर है 9474234000, 9474234000। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। इस गीत के लिए हमें व्हाट्सएप किया है गैरा चर्मा से श्रुति, सिमरन, रुद्र और शिवराम ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर इस गीत को।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं दहक फिल्म का गीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता है मीठा खाड़ी चौक से आनंद, प्रदीप, मयूर, आकांक्षा और नवीन।

ऐतराज फिल्म का गीत अभी आपको सुनवा रहे हैं। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता हैं शादीपुर से शिवा, नरेन, नीता, दीपिका और राजू।

श्रोता, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम संदेशे आते हैं। बॉम्बे जयश्री की आवाज में अब पेश है रहना है तेरे दिल में फिल्म का गाना। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें संदेशे भेजा है पत्थरगड्ढा से मिथुन रॉय, शक्तिवेल, तारा मिंच, राखी और सुप्रिया डे ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी दोस्तों की पसंद पर इस फिल्म का ये गीत।

जब भी मैट फिल्में आई अब सुनते हैं उस्ताद राशिद खान को, इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजा है डॉलीगंज से ज्योति सोम वर्षा पीहू ऋतिक तोब्यास और नीतीश कुमार ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए अब सुनते हैं तारा रमपम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है शान और श्रेया घोषाल ने। इस गाने के लिए हमें संदेश भेजा है निकोबार से डैनी, निशा, वैलेंटाइन, स्मिता और सपना ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी दोस्तों की पसंद पर तारा रमपम फिल्म का ये गाना।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीपों के कई भागों में वर्षा हुई। जनसेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि द्वीपों के एक दो भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की आशंका है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। समुद्र काफी अशांत रहेगा। ऐसी स्थिति में मछुआरों को 22 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:31 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 30वीं तिथि यानी 21 अगस्त सन 2026 इस समय प्रातः के 5:28 और 35 सेकेंड हुए हैं। अपनी पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। वक्त है अनमोल विचार का।
1: जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। असफलता हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो गिरकर भी उठता है और लगातार प्रयास करता है, वही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छूता है।
0: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।